एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गुना केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में

0: उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.3 MHz पर आपने ट्यून किया है गुना आकाशवाणी केंद्र। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा।

सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में शीश झुकाकर करते हुए नमन। आइए सुनते हैं यह प्रभु वंदन।

गुना एफएम से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति धारा। आइए सुनते हैं हरिओम शरण प्रदीप चटर्जी, सुरेंद्र कोहली और

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति धारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के गुना केंद्र से आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय धारावाहिक प्रस्तुति ए हरिहरण और साथी के स्वर में।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी, जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे, लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की, ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हो आया और इनकी टाएं टाएं सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी। आज इस कार्यक्रम में आप और हम सुन रहे हैं नरेंद्र कुमार राहुल और साथी के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत।

0: इस बंगाली लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक रंजनी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। हिंदी में समाचारों का प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की

0: निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कम्प्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: रेडियो फ्रीक्वेंसी 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज के प्रसारण की विस्तृत समय सारिणी कार्यक्रम विवरण में।

अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर सूचनात्मक और जनउपयोगी सूचनाओं के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा सुबह सवेरे। समय रहेगा 7:21। 7:50 पर गुना जिले के जिला अधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल जी का किसानों को खेती के संबंध में संबोधन प्रसारित किया जाएगा।

साप्ताहिक कार्यक्रम पर्यावरण पत्रिका वसुंधरा का प्रसारण समय रहेगा 8:30। प्रस्तुतकर्ता होंगे राजकुमार कौशल। और 9 बजे सुनिए विविध भारती मुंबई के विविध रंगी कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

प्रातः 9:30 बजे एक फनकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म से बाजीगर फिल्म के गीत।

जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से किया जाएगा। फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना प्रस्तुत करेंगे। प्रातः 10:05 पर प्रस्तुत करता होंगे राजकुमार कौशल।

11 बजे एक बार पुनः जुड़िए विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम की सभा में 5:10 पर संस्कार सरिता कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

शाम 6 बजे सुगम संगीत के अंतर्गत भजन सुनिएगा अलग अलग कलाकारों के स्वर में। और आज की शाम का प्रसारण समय रहेगा 6:30, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

शाम 7:21 पर प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बात होगी मछली पालन कैसे करें और शासन की योजना का लाभ कैसे लें इस विषय पर, और सब्जियों की तुड़ाई और पैकिंग का महत्व विषय पर सुनेंगे सामयिक कृषि चर्चा। इसके साथ ही गुना जिले के जिलाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल जी का किसान

0: सरकार के 12 साल पूरे होने पर एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा रात्रि 8 बजे। आकाशवाणी के गुना केंद्र से सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत 8:35 पर। और विविध भारती मुंबई के विविध कार्यक्रमों का अनुप्रसारण रात्रि 9 बजे से आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुन सकेंगे। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सिलसिलेवार समय सारिणी। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार सुनिए आकाशवाणी भोपाल से अब से कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज समापन। कृषि मंत्रियों की बैठक में साझा दस्तावेज पर लगेगी मुहर। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल दौरे पर, शूटर्स से मुलाकात, स्वच्छता अभियान और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक कैडेट सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा श्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ब्रातिस्लावा में वे स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और आखिरी दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, कृषि नवाचार और तकनीकी साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। सदस्य देश कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय सुधारने और टिकाऊ कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए साझा रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं कल हुई चर्चा में श्री चौहान ने कहा,
1: छोटे किसानों की बेहतर आजीविका के लिए, महिलाओं की भागीदारी और खेती में बढ़े इसके लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ब्रिक्स देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आधी आबादी तो यहीं रहती है दुनिया की और 43% से ज्यादा उत्पादन यहाँ होता है। आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके

0: सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है। हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस बल को साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों को जांच भत्ता देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा, भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नशा विरोधी अभियान को लगातार जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने 2028 के सिंहस्थ पर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। डॉ. सोमनाथन ने कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता को किसी भी तरह से प्रभावित करने या छेड़छाड़ करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा का परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। 62% से अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 57 से अधिक रहा। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक विद्यार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। सुबह 7:30 बजे से वे शूटिंग एकेडमी में शूटर्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 8 बजे सूरजनगर में स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने कहा कि अधिक से अधिक परीक्षाएं टैबलेट और कम्प्यूटर आधारित कराई जानी चाहिए, ताकि प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए आसान और जवाबदेह बने। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 47,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती पूरी कर ली है। पीएम सुनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड आवेदन संग्रहण में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक 10,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 500 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये योजना शहरी पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज से 18 जून तक वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर जाएंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कल लाभार्थियों को यात्रा टिकट वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी हैं। कल जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी सहित कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजवेस्टन मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 219 रन बनाए, जिसमें डैनी वैट हॉल्स ने शानदार नाबाद 105 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 132 रन पर ही सिमट गई। डैनी वैट हॉल्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीमें भाग ले रही हैं। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एक बैठक के दौरान शहर के पास बनाए गए बड़ौदी फूड पार्क में एक ही फर्म को प्लॉट अलॉटमेंट के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। खंडवा में निमाड़ क्लब परिसर में जिम, क्रिकेट टर्फ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। आगर मालवा

कृषि उपज मंडी में आयोजित किए गए विधिक जागरूकता शिविर में बच्चों को शिक्षित कर उनके शैक्षणिक विकास के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेहर कलेक्टर ने खदान से खनिज पदार्थ निकालने के बाद बिना क्लोजर प्रोटोकॉल का अनुपालन किए खुला छोड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है। झाबुआ में खरीफ की बोनी शुरू होने से उर्वरकों की मांग बढ़ी है। जिला प्रशासन ई विकास प्रणाली से वितरण पर नजर रखेगा। बैतूल जिले के आदिवासी विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत रंभा के रिंगढाना कस्बे में कल रात भीषण आग लग गई और आग ने करीब 15 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मंडला कलेक्टर की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा की गई। शुजालपुर नगर पालिका परिसर में आयोजित जनकल्याण शिविर के पहले दिन 46 आवेदन प्राप्त हुए। शुजालपुर में शिविर का आयोजन 13 और 14 जून को भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

रेडियो फ्रीक्वेंसी 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का गुना केंद्र। प्रस्तुत है जन उपयोगी सूचनाओं के साथ फिल्म संगीत का यह सुनहरा कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आज आपकी रेडियो दोस्त सरिता। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से नगमे के साथ जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। अमानत फिल्म के इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है संगीतकार रवि ने।

सुबह सवेरे कार्यक्रम में इस खूबसूरत नगमे के बाद आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश परीक्षा के तहत एनसीटीई पाठ्यक्रमों बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड आदि के प्रथम चरण का महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिया है। इस चरण में पात्र अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए हैं और प्रवेश पक्का करने के लिए 15 जून 2026 तक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। विभाग के अनुसार एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल 64,641 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, जिसमें 59,113 आवेदनों का सत्यापन हुआ है। प्रथम चरण में 32,918 अभ्यर्थियों को कॉलेज मिले हैं। विभाग ने कहा है कि अभ्यर्थी अपने लॉगिन से आवंटन की जानकारी देखें और समय सीमा में शुल्क जमा करके प्रक्रिया पूरी करें। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। सच्चा झूठा फिल्म का ये युगल नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में, आइए सुनते हैं, जिसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने।

गुना एफएम से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे और अब वक्त है एक खबर का। नगर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक आयोजन श्रुत स्वरांजलि महोत्सव का भव्य आयोजन 17 से 19 जून तक वर्धमान कॉम्प्लेक्स परिसर में किया जाएगा। वात्सल्य मूर्ति बीजाक्षर ध्यान प्रणेता मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से लेखन, संगीत निर्माण एवं गायन क्षेत्र की प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुतियां देंगी। आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज आरोन एवं विद्या शरणम परिवार द्वारा निर्ग्रंथम क्रिएशन इंदौर के संयोजन में किया जा रहा है। आयोजन के प्रचार प्रभारी ने बताया कि देश भर से प्राप्त प्रविष्टियों में चयनित 10 श्रेष्ठ कलाकार समूह फाइनल चरण में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में बॉलीवुड और संगीत जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां निर्णायक की भूमिका निभाएंगी, जिनमें प्रसिद्ध गायक स्काई किंग आकाश जैन, फिल्म भूल भुलैया, बिल्लू बार्बर और ढोल की पटकथा लेखिका मनीषा कोरडे, पार्श्व गायिका आरोही अनिल आगरकर, वरिष्ठ गायक डॉ. कुमार चटर्जी तथा सुप्रसिद्ध भजन गायक सुधीर व्यास शामिल हैं। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर तक पहुंचाने का प्रयास है। महोत्सव के दौरान सम्यक कौमुदी एवं तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही श्रेष्ठ श्रुत संरक्षक विद्वान को श्रुत रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से कलाकार, साहित्यकार, विद्वान और श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजन के दौरान उत्कृष्ट प्रतिभागियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाएगा। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस सांस्कृतिक महोत्सव का हिस्सा बनने की अपील की है। और आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: अनजान के लिखे राजेश रोशन के संगीतबद्ध किए याराना फिल्म के इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने। सुबह सवेरे कार्यक्रम श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के गुना केंद्र से। सुनेंगे कुछ और नगमे और जानेंगे कुछ और खबरों के बारे में इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते हैं या उन्हें सच भी करना चाहते हैं? आपके सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही क्रांतिवीर ताटेटोपे विश्वविद्यालय गुना में प्रवेश लीजिए। तो आज ही विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल www.kttb.in को ओपन करें और विश्वविद्यालय में प्रवेश लें। क्रांतिवीर ताटेटोपे विश्वविद्यालय गुना, जहाँ सपने बनते हैं हकीकत।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: नहीं झुमके
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमको का क्या,
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभिमान फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। एस डी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। और बारी है खबर की। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 पुनः परीक्षा कक्षा 5 एवं 8वीं तक जिले के शासकीय अशासकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय मदरसा के बच्चों हेतु दिनांक 16 जून 2026 से 10 बजे दोपहर 12:30 बजे तक जिले के 52 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र समस्त जन शिक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां जन शिक्षा केंद्र प्रभारी परीक्षा केंद्राध्यक्ष होंगे। जिले में कक्षा 5 से में 1878 और कक्षा 8 में 2353 बच्चे पुनः परीक्षा में नामांकित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर ज्यादा गर्मी को देखते हुए शीतल जल, ओआरएस घोल, इलेक्ट्रोल एवं ग्लूकोज आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर 20

शर्ती पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष के लॉगिन आईडी पर ऑनलाइन प्रिंट निकालकर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी विकासखंड स्तर पर एवं जिला स्तर पर परीक्षा कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी शाला प्रभारी एवं शिक्षकों को परीक्षा में 100% छात्र छात्राओं की उपस्थिति कराने हेतु परीक्षा के पूर्व उनके पालकों से संपर्क हेतु निर्देशित किया गया है। आज परीक्षा निर्देश एवं आवश्यक तैयारी पूर्ण करने हेतु विकासखंड कार्यालय गुना में आवश्यक बैठक का आयोजन कर परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराने एवं परीक्षा गोपनीय सामग्री परीक्षा उपरांत मूल्यांकन केंद्रों पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

हमराज फिल्म के इस नगमे को गाया था महेंद्र कपूर ने। गीत के बोल साहिर के थे और संगीत रवि का। सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गुना केंद्र से। श्रोता चलते हैं खबर की ओर। 10 नवंबर को आयोजित होने वाले ग्रुप 2 असिस्टेंट ऑफिसर डिप्टी ऑडिटर और अन्य समकक्ष पदों के लिए संयुक्त परीक्षा भर्ती 2022 के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 77 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए 14,866 एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। उम्मीदवार कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

0: लता मंगेशकर के गाय सौतन फिल्म के इस नगमे के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। आइए अब सुनते हैं गुना जिले के जिलाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल जी का किसानों को खेती के संबंध में संबोधन।
1: आकाशवाणी गुना के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं किशोर कन्याल, कलेक्टर गुना। आज मैं आप सबके सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि गुना में गुलाबों की खेती, विशेष रूप से जो पोली हाउस वाले हैं, उनका काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ रहा है और काफ़ी एरिया बढ़ रहा है। अभी हमने 10 जून को भी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप रखी थी, उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया और जो डिफरेंट हमारे वेंडर्स थे, जिन लोगों को हमारे जो बैंकर्स हैं जो लोन देते हैं, वो भी उपस्थित थे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अधिकारी आए थे, स्टेट से अधिकारी आए थे। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी वर्कशॉप थी। हम लोग

ये चाहते हैं कि जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और स्टेट के जो हमारी पॉलिसीज है उसका लाभ लें। अधिकतम 3 एकड़ तक 1 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसमें देता है। और जिस प्रकार से हमारा गुना का करंट स्टेटस है, लगभग 50 एकड़ पर अभी खेतीबाड़ी हो रही है पॉलीहाउस गुलाबों की, और हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग लगभग 100 एकड़ इसका और इजाफा करेंगे। चूंकि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें लगभग लगभग 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट वो लोग एक साल में 1 एकड़ भूमि से कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है। तो हम लोग लोगों को यही प्रेरित करते हैं कि आप जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उससे हटकर भी आप इस प्रकार की खेतीबाड़ी करेंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होंगे। इसी प्रकार हमने एक दूसरा जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है थाइपिंग अमरूदों की खेती, उसको भी हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग लगभग 1 लाख पौधे अपने गुना जिले में लगाए हैं। 50,000 तो हमने SHG ग्रुप के माध्यम से लगाए हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमारे कुछ किसान बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं और उनकी 8 से 10 लाख रुपए तक की इनकम 1-1 एकड़ में एक साल में हो रही है। आप सोचिए, बहुत से किसान ये कहते हैं कि वो 1 एकड़ में 50,000 रुपये का ही अधिकतम लाभ लेते हैं। बहुत रेयरली लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम 1 लाख रुपये कमाते हैं। तो अब हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल गुना जिले में उन्हीं के बीच में जो हमारे जागृत किसान हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार बहुत से किसानों ने अभी सब्जी भाजी उगाना शुरू कर दिया है अलग टाइप की, उस पर भी उनका 5 लाख रुपये तक का इनकम 1 साल में 1 एकड़ में हो रहा है। कुछ लोगों ने जो हमारा सामान्य गुलाब होता है, ओपन खेती जो गुलाबों की होती है, वो भी कर रहे हैं, उसमें भी 5 से 6 लाख रुपए की 1 एकड़ में 1 वर्ष में इनकम हो रही है। तो हम सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने खेती के पैटर्न में परिवर्तन करें। जहां आपको अभी 1 एकड़ में एवरेज 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं, वहीं पर आपका ऑप्शन है कि आप 5 लाख का भी ऑप्शन कर सकते हैं, 10 लाख का भी और 15 लाख का भी। आप जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी और ये सभी के लिए अच्छा है। और इससे बढ़कर एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। गुना जिले में इस समय लगभग 4,000 किसान 4,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारे 20 BRC सेंटर्स भी हैं, इसके अलावा 30 जगह पर हमारे कृषि सखी भी हैं। प्रत्येक सेंटर में 2-2 सखियाँ होती हैं और वो सब प्राकृतिक खेती के बारे में ही जागृत लोगों को करती हैं। आजकल हम लोगों ने एक नया थीम दिया है, जो खाओ वही उगाओ। तो आप सोचिए, आप यदि वही उगाएंगे जिसको आप खाते हो, आप ये भी तो ध्यान रख रहे हो ना, जो आप खा रहे हो वही दूसरा भी व्यक्ति भी खाता है। तो ऐसी चीज़ उगाओ जो आपके लिए भी अच्छा हो, हेल्दी हो। इसी प्रकार हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं लोगों को, हर खेत में मेड़ और हर मेड़ में पेड़। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में खेतों के बीच में जो मेड़ होती थी उसमें बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, पर जैसे जैसे परिवारों में विभाजन हुआ, खेती बाड़ी का विभाजन हुआ, वो मेड़ छोटी होती चली गई और उसके बीच में से जो पेड़ थे वो कटते चले गए। समय आ गया है हम फिर से उस दिशा में आगे बढ़ें और मेड़ में, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो बरगद का हो, कई सारे पेड़ होते हैं जो आप लगा सकते हैं, आप लगाइए, छायादार भी रहेंगे, उससे जो उसकी मिट्टी उसके उपजाऊपन भी रहता है। इसी प्रकार हम बार बार एक चीज़ को और बोलते हैं, अब समय आ गया है कि जब हम खेतों में कटाई करते हैं फसलों की, चाहे वो पराली हो या नरवाई हो, हमें उस पर आग नहीं लगानी है। जो हमारे शेष टुंटल बचे रहते हैं उस पर आग नहीं लगानी है, किसी भी प्रकार से नहीं लगानी है। यदि आप शक्ति की बात करोगे तो हम बहुत संख्या में किसानों पर फाइन भी लगाए हुए हैं। अब हम कई बार सरकार बहुत सख्त भी होना चाहती है कि इसमें और भी हो सकता है, कई बार सरकार की योजनाओं का लाभ भी आपको ना मिले यदि आप अपने खेतों में जानबूझ के आग लगाओगे, और आप चाहो तो उसी से आप उसको कन्वर्ट कर आप पैसा भी कमा सकते हो, उससे भूसा चारा बना सकते हो। कई एजेंसीज हैं जो आपके खेतों में ही आते हैं, आपके खेत का जो वेस्टेड आपका जो बचा एग्रीकल्चर पार्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसे भूसा में कन्वर्ट करते हैं। कई लोग उससे फॉसिल ऑयल उसका क्या कहते हैं फ्यूल भी बनाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है, तो हमें उसको वेस्ट को जलाना नहीं है, उसको यूज़ करना है, उसको भी सोर्स ऑफ इनकम के रूप में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, आने वाला समय हमारे लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत तरक्की करने का है। गुना जिले के किसानों ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं और हम सब लोग उनके साथ बीच बीच में इंटरेक्शन करते रहते हैं। मैं रात्रि चौपाल में भी जब गांव में जाता हूं तो इसी चीज़ को

0: पर फोकस करता हूँ। तो आइए आप और मिलकर गुना जिले में एक नई शुरुआत करते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ाते हैं और कृषि का जो मैंने बताया पैटर्न चेंज करके ज्यादा लाभ का कृषि वाली चीजें हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे गुना जिले के जिलाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल जी का किसानों को खेती के संबंध में संबोधन। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। मॉर्निंग न्यूज और समाचार प्रभात का आज का अंक अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
6: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
8: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से

0: अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड तालेतिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं

0: का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ

बगीचे में ऐसे कीटों के उत्पन्न होते ही या उनके गमले के प्रथम दौर में ही इन्हें नष्ट करना आवश्यक है। दो एक दिन की देरी भी पूर्ण तबाही का कारण बन सकती है। इन्हें नष्ट करने के लिए जहरीले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, अतः रसायन का घोल बनाते व प्रयोग करते समय पूर्ण सावधानी बरतें। पैकेट पर छपे मिश्रण के फॉर्मूले व विधि का भी पूर्ण पालन करें। उतनी मात्रा में दवा का प्रयोग व पानी के साथ अनुपात पैकेट पर लिखा है उसी मात्रा में दवा का प्रयोग करें। कीट पतंगे, तितलियां और टिड्डे तो मेहमान शत्रु होते हैं। आपकी फुलवारी में आते हैं, पौधों को नष्ट करते हैं और भाग जाते हैं, परंतु इल्लियां, गोबरेले व पिस्सू ऐसे स्थायी शत्रु हैं जो आपकी फुलवारी में एक बार यदि आ जाएं तो मरकर ही बाहर जाते हैं। गमलों में लगे पौधों, बहुत छोटी फुलवारी या ऐसे बगीचों में जहां नियमित सफाई की जाती है और गंदगी इकट्ठी नहीं होने दी जाती, ये प्रायः पैदा नहीं होते या नुकसान करने की सीमा तक नहीं बढ़ पाते। बड़े बड़े बाग, बगीचों, उद्यानों, किचन गार्डन और किसानों के प्रबल शत्रु होते हैं इस वर्ग के कीट। इन्हें नष्ट करने के लिए भी उसी दवाओं व तरीकों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग कीट पतंगों को मारने के लिए किया जाता है। इल्लियां कई प्रकार की होती हैं और प्रायः अलग अलग वर्ग के पौधों में अलग अलग प्रजाति की इल्लियां निवास करती हैं। ये लंबी, रेंगने वाली, अनेक पैरों से युक्त और पंख विहीन होती हैं, अतः उड़ नहीं सकती। पौधों की टहनियों व तनों पर घूमती रहती हैं और अपने पैने दांतों से उनको कुतर कुतर कर खाती रहती हैं।

इनमें सबसे खतरनाक सैनिक इल्लियां होती हैं, जो सैकड़ों के झुंड में रहती हैं और एक एक इल्ली की लंबाई 6-7 सेंटीमीटर तक होती है। 9-10 सेंटीमीटर की लंबाई वाली सींग वाली इल्ली छोटे छोटे समूह में रहती हैं। ये कनेर व गुलाब जैसे मीठे फूल वाले पौधों पर अधिक रहती हैं। अन्य इल्लियां 2-5 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। बहुत छोटा बगीचा होने पर इन्हें हाथ से चुन चुन कर भी नष्ट किया जा सकता है। वैसे लेड आर्सेनिक के घोल पौधों पर छिड़कने से लगभग सभी प्रकार की इल्लियां नष्ट हो जाती हैं। लेड आर्सेनिक नामक इस जहर को पानी में घोलकर फव्वारे से पौधों पर इस प्रकार छिड़का जाता है कि संपूर्ण वृक्ष या पौधा पत्ते टहनियां तना व जड़ों का ऊपरी भाग व आसपास की मिट्टी गीला हो जाए। आधे किलोग्राम आटे में 50 ग्राम पेरिस ग्रीन नामक रासायनिक विष मिलाकर और उस आटे को गूंदकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर बाग में डाल देने पर भी इल्लियां व गुबरेले आदि इन्हें खाकर मर जाते हैं। परंतु ये गोलियां शाम को ही डालनी चाहिए और बची हुई गोलियां सुबह उठाकर रख देनी चाहिए। यह तीव्र विष है, अतः यदि पक्षी या कोई बच्चा इन्हें खा लेगा तो उसके जीवन को भी खतरा पैदा हो जाएगा। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे भी होते हैं जो बगीचे की जमीन में रहते हैं। कम संख्या में होने पर तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु अधिक संख्या में हो जाने पर ये पौधों की जड़ों को भी कुतरने लग जाते हैं या खाद के अधिक लाभकारी तत्वों को भी खा पी जाते हैं। जिन बगीचों की नियमित सफाई समय समय पर निराई गुड़ाई होती रहती है, वहाँ ये अधिक संख्या में पैदा नहीं हो पाते। वैसे भी जब अन्य कीट पतंगों व इल्लियों को मारने के लिए दवाओं का छिड़काव किया जाता है, तब ये भी साथ ही मर जाते हैं। पिस्सू, मावा, माइटेस तथा केंचुए इसी वर्ग के शिष्ट कीट हैं। सैकड़ों पैरों वाला लाल रंग का छोटा सा लंबा कीड़ा इस वर्ग का ऐसा कीड़ा है जो बरसात के मौसम में छोटे और बड़े बगीचों में ही नहीं गमलों में भी बड़ी संख्या में पैदा हो जाते हैं। ये खाद में भी पैदा हो जाते हैं और गोबर से लिपे पुते कच्चे मकानों में भी। इन्हें मारने के लिए पेरिस ग्रीन का प्रयोग किया जाता है। फल फूलों के बीज विक्रेता, उर्वरक विक्रेता और कुछ मेडिकल स्टोर्स इन दवाओं या रसायनों को बेचते हैं। छोटे स्तर पर बागवानी करने वाले या 10-5 गमलों में पुष्प उगाने वाले व्यक्ति किसी भी विक्रेता से कीटनाशक खरीदकर प्रयोग

0: हम कुछ चुने हुए कीटनाशकों का संक्षिप्त परिचय आपको दे रहे हैं, जिसमें आप अपनी सुविधा, आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार उचित कीटनाशक का चुनाव आसानी से कर सकें। DDT पाउडर। DDT सर्वसुलभ कीटनाशक है और पास पड़ोस में ही केमिस्ट आदि से प्राप्त किया जा सकता है। यह मंद गति से काम करता है, परंतु बहुत समय तक इसका असर रहता है। इसे पाउडर के रूप में पौधों के ऊपर व जमीन पर छिड़का जा सकता है। इसे पानी में मिलाकर फव्वारे द्वारा भी छिड़का जा सकता है। यद्यपि यह पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता, परंतु फिर भी अच्छा काम करता है। पाउडर के रूप में इसे छिड़कने से पहले कुछ मात्रा में राख मिलाई जा सकती है या बारीक कपड़े की पोटली में रखकर छिड़का जा सकता है। दीमक, चींटियों और जमीन में रहने वाले कीड़ों के साथ साथ अनेक प्रकार की इल्लियों को भी यह नष्ट कर देता है तथा पौधों और मनुष्यों पर घातक असर भी नहीं डालता। पिरेथ्रम DDT के समान निर्दोष परंतु बहुत तीव्र व शक्तिशाली कीटनाशक है। इसका प्रयोग भी DDT के समान पानी में घोलकर किया जा सकता है और पाउडर के रूप में भी लगभग सभी प्रकार के कीड़ों को नष्ट कर सकता है। यही कारण है कि छोटे बागवान सबसे अधिक प्रयोग पिरेथ्रम का ही करते हैं।
1: कहा आपका ये बजा ही सही।

निकोटीन सल्फेट, यह भी एक रसायन है जो शरीर की त्वचा को जला देता है। 5 लीटर पानी में 100 ग्राम कपड़े धोने का साबुन या मछली का तेल और 6-7 ग्राम निकोटीन सल्फेट मिलाकर फव्वारे द्वारा छिड़क देने पर पौधों पर रहने और रेंगने वाले लगभग सभी कीड़े मर जाते हैं। मिट्टी में इसे डाल देने पर मिट्टी में रहने वाले कीड़े भी मर जाते हैं। इसे भी प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि त्वचा पर पड़ जाने से खाल जल जाती है। पेरिस ग्रीन, यह भी एक विष है और इसकी 3 प्रयोग विधियां हैं। इसका प्रयोग अधिकतर आटे में मिलाकर गोलियां बनाकर या शक्कर में मिलाकर ही अधिक किया जाता है, परंतु पत्ते चबाकर खाने वाले कीड़ों को मारने के लिए इसका घोल बनाकर छिड़काव भी आप कर सकते हैं। 5 लीटर पानी में 30-35 ग्राम पेरिस्प्रीन व 100 ग्राम चूना मिलाकर घोल तैयार किया जाता है और फव्वारे से छिड़का जाता है।

परंपरागत उपचार व घोल। एक लीटर पानी में 50 ग्राम साबुन मिलाकर उबाल लीजिए और साबुन घुल जाने पर आग से उतारकर इसमें 2 लीटर मिट्टी का तेल मिलाकर रख लीजिए। प्रयोग करते समय 1 लीटर ताजे पानी में 70 से 100 मिलीलीटर यह घोल मिलाकर पौधों पर छिड़काव कीजिए। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम तंबाकू डालकर 20 से 25 मिनट तक उबाल लें। बर्तन को ढककर

रखें। ठंडा हो जाने पर इसे छानकर इसमें बारीक काटकर 25 से 30 ग्राम साबुन डाल दें। 5 लीटर पानी में इस घोल को मिलाकर पौधों पर छिड़क दें। यह घोल लंबे समय तक प्रभावशाली बना रहता है। गंधक व चूने का घोल इस वर्ग का सबसे तीव्र कीटनाशक है। पानी में घुलने वाला गंधक लीजिए व मकानों पर सफेदी किए जाने वाला चूना 200 ग्राम गंधक पीसकर 1 लीटर पानी में डालकर रख दीजिए और दूसरे बर्तन में 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चूना दोनों के अच्छी तरह मिल जाने पर एक जगह मिलाकर उबाल लीजिए। अच्छी तरह उबालने के बाद 25 से 30 लीटर पानी में वह घोल डालकर फुलवारी में छिड़क दीजिए। यह तीव्र रसायन है और दीवारों, कपड़ों, फर्नीचर व गमलों पर दाग या निशान डाल देता है। यदि आपने कुछ ही गमले लगाए हुए हैं और रात्रि में वहां कीट पतंगे आ जाते हैं तो आप यह उपाय भी अपना सकते हैं। चारों ओर गमले रख दीजिए व बीच में तसले या परात में पानी भरकर बीच में तेज लौ का दीपक या मोमबत्ती जला दीजिए या बिजली का बल्ब पानी की सतह से 3-4 सेंटीमीटर ऊंचा लटका दीजिए। प्रकाश कीड़ों को आकर्षित करता है, अतः वे प्रकाश के पास आकर और पानी में गिरकर रात भर मरते रहेंगे। इसी प्रकार बहुत कम पौधे होने पर इल्लियों को हाथ से चुनकर और टिड्डों आदि को जाल से पकड़कर भी नष्ट किया जा सकता है। फुलवारी में घास फूस जलाकर धुआं कर देने से भी कुछ कीड़े मर जाते हैं या भाग जाते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां। सभी कीटनाशक जहरीले, त्वचा को जला देने वाले और वायु के साथ शरीर में जाने पर हानिकारक होते हैं, अतः छिड़काव करते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। मुंह पर कपड़ा और आंखों पर चश्मा लगाकर काम करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। दवाओं के खाली डब्बे, शीशियां व बक्से आदि नष्ट कर दें। इन्हें साफ करके भी प्रयोग न करें क्योंकि विष का प्रभाव इनमें रह ही जाता है। निश्चित मात्रा में अधिक दवा कभी न डालिए, पौधे मर सकते हैं। इनका प्रयोग छिड़कने के यंत्रों, पिचकारियों या पंपों द्वारा ही कीजिए। प्रयोग के बाद यंत्रों को धो पोंछकर व तेल लगाकर रख दीजिए। प्रयोग के बाद शरीर व वस्त्रों की संपूर्ण सफाई अनिवार्य है।

साप्ताहिक कार्यक्रम पर्यावरण पत्रिका वसुंधरा अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुना केंद्र से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल।

FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुनते हैं देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती के विविध रंग, अब से कुछ ही पलों में।

और रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। विशाल भारद्वाज की आवाज में गुलजार की रचना थी, विशाल शेखर का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। पालोमी की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामू गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमजोर हो रहे हैं। क्या 49 साल उम्र होती है इस दुनिया से विदा होने की? अब तो लोगों की उम्र लंबी हो रही है, सवाल यह है कि युवाओं को दिल की बीमारी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्या उनके खानपान में गड़बड़ी है? क्या उनके कामकाज का तरीका सही नहीं है? क्या वे जरूरत से ज्यादा तनाव ले रहे हैं? क्या वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है? आइए आज इन सवालों के हम जवाब खोजें और ध्यान रखें युवाओं के स्वास्थ्य का। आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, देखें कि उनका खानपान कैसा है, उनके डाइट में क्या क्या चीजें शामिल है, कहीं फास्ट फूड का प्रयोग ज्यादा तो नहीं कर रहे। सुनते हैं ये गाना, फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल हैं, विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पलोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन जवानी जो शहीद।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं, आज एक फनकार कार्यक्रम में 1993 यानी 93 की हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया, फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, राखी और दिलीप ताहिल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसने हिंदी सिनेमा में सफलता की नई इबारत लिखी, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्शकों को अंत तक अपनी सीट से बांधे रखा। और जी हाँ, नाम था बाजीगर।

गोरे श्रोताओं, बाजीगर ने दर्शकों को यह एहसास कराया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं और रोमांच का अद्भुत संगम भी हो सकता है। शाहरुख खान का दमदार अभिनय, काजोल की मासूमियत और शिल्पा शेट्टी की यादगार उपस्थिति, यही तो है बाजीगर की खूबसूरती।

बाजीगर फिल्म के नगमे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फनकार के अंतर्गत। दोस्तों, कुछ फिल्में समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि यादों में और भी सुनहरी होती जाती हैं। बाजीगर उन्हीं फिल्मों में से एक है।

दोस्तों बाजीगर फिल्म की बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, कहानी ऐसी कि हर मोड़ पर एक नया रहस्य और गीत ऐसे कि आज भी होंठों पर मुस्कान ले आए। 90 के दशक में प्यार, दर्द, रहस्य और जीत की कहानी कहती इस फिल्म का हर गीत अपने आप में एक अलग एहसास समेटे हुए है।

2019 में फिल्म फेयर अवार्ड में 10 नामांकन इस फिल्म को मिले और 4 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को मिला। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया, जबकि गीत देव कोहली, रानी मलिक और अन्य गीतकारों ने लिखे। फिल्म में काजोल और शाहरुख की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बाद में यह जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में शामिल हो गई। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा नगमा।

श्रोताओं, बाजीगर फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नायक दिया जो परंपरागत हीरो से बिल्कुल अलग था। रोमांच, रहस्य, संगीत और दमदार अभिनय से सजी यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए है।

एक फनकार कार्यक्रम में गुना एफएम से इस समय आप सुन रहे हैं बाजीगर फिल्म के नगमे। जी हां श्रोताओं, यादों के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी बाकी हैं बाजीगर के कुछ और सुनहरे नगमे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: और श्रोताओं, एक फनकार कार्यक्रम में पुनः लौटते हैं। 90 के दशक की संगीत भरी गलियों में चलते हुए बाजीगर फिल्म के खूबसूरत नगमों की ओर। जी हां, जो कि फिल्म ही नहीं है, 90 के दशक की उन सुनहरी यादों का नाम है जिन्हें दर्शक आज भी बेहद प्यार से याद करते हैं।

श्रोता, बाजीगर फिल्म शाहरुख खान के करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने इसमें एक नकारात्मक छवि वाले किरदार को निभाने का जोखिम उठाया था। ये काली काली आंखें, ये ऐ मेरे हमजफर आज भी 90 के दशक के सबसे लोकप्रिय गीतों में गिने जाते हैं। फिल्म की सफलता के बाद शाहरुख खान को लगातार अलग अलग तरह की भूमिकाएं मिलने लगीं और वे हिंदी सिनेमा जगत के शीर्ष सितारों में शामिल हो गए। यह फिल्म शिल्पा शेट्टी की डेब्यू फिल्म भी थी। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लोकप्रिय नगमा बाजीगर फिल्म का।

श्रोता, बाजीगर फिल्म के इस नगमे के साथ ही एक फनकार कार्यक्रम का ये खूबसूरत सफर अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए फनकार के साथ अगले कार्यक्रम में। दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए सरिता का नमस्कार। जिले की चिट्ठी अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से।

रहा है। इसी कड़ी में रायसेन जिले में कृषि के क्षेत्र में एक और अहम पहल की गई। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिले की कृषि रोडमैप को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि

योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवतियों को सेना पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय ये प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। जिले में 1 जून को रेडक्रॉस समिति द्वारा सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगाकर गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाएं वितरित की गयी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत जिला रायसेन द्वारा सिलवानी में साइक्लोथॉन और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने साइकिल रैली में उत्साहपूर्वक भाग लेकर फिटनेस और हरित पर्यावरण का संदेश दिया। रायसेन जिले के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द ही खास ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल का मकसद है कि शिक्षक और कर्मचारी ये समझ सके कि यदि कोई विद्यार्थी मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा हो तो उसे समय पर पहचान कर मदद की जा सके। ये ट्रेनिंग 6 जुलाई को सरकारी कॉलेजों के लिए, 7 जुलाई को प्राइवेट कॉलेजों के लिए और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन आयोजित होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे रायसेन जिले की चिट्ठी, आलेख विनीत महेश्वरी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है गुना एफएम। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो एफएम गुना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजकुमार कौशल।

0: हेलो एफएम गुना
1: जी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहन धाकड़ बोल रहा हूँ
0: जी। मोहन धाकड़ जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: सब ठीक है
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनने के लिए आपने फोन किया?
1: हम साथ साथ फिल्म का गाना सुनना है
0: जी। कौन सा गीत?
1: हम साथ साथ फिल्म का
0: जी। गीत के बोल क्या होंगे?
1: अरे अच्छे होंगे, कम कुछ सुना दो जो मालूम
0: जी। आकाशवाणी गुना में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हाँ हेलो एफएम गुना सर, मैं घनश्याम यादव बोल रहा हूँ पुराना से।
0: जी घनश्याम यादव जी बताइए,
1: आप सारी टीम कैसी है आकाशवाणी की?
0: जी सभी बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है ना।
0: जी तो आपने कौन सा गीत सुनने के लिए हमें आकाशवाणी गुना में फोन किया?
1: आकाशवाणी टीम गाना सुनना चाहते हैं सर हम।
0: जी बिल्कुल बताइए कौन सा गीत।
1: वो चंदन और गुंजा नदिया के पार।
0: जी चंदा और गुंजा नदिया के पार।
1: पोती का नाम है वंदना, बच्चे का नाम है वसुदेव और पिंकी।
0: जी एफएम गुना में फोन करने के लिए धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हाँ नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार,
0: मैं शरद गुना से बोल रहा था, सुबोध कुमार श्रीवास्तव।
1: जी
0: जी मैडम, आप फोन निर्भर मैडम बोल रही हूँ।
1: जी मैं अनाउंसर अमिता बोल रही हूँ।
0: जी नमस्कार, आपकी नहीं आई। हाँ आज
1: जी,
0: और
1: आपने कॉल किया हमें कौन सा गीत सुनने के लिए?
0: मैडम मैं फिल्म जुर्म का सुना दीजिएगा ना, जब कोई बात कर जाए।
1: जी एफएम गुना में फोन करने के लिए धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो एफएम गुना, नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ।
0: जी राम नरेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम ठीक हैं और आशा करते हैं आप भी ठीक होंगे और हमारे सभी आकाशवाणी गुना के श्रोता मित्र ठीक होंगे।
0: जी जी बिल्कुल। जी बताएं, आज आपने कौन सा गीत सुनने के लिए एफएम गुना में फोन किया है?
1: हाँ जी जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारी फरमाइश है, फिल्म का नाम है चरणों की सौगंध
0: जी,
1: और गाने के बोल है ना बाबा मैं ना आऊं, चल तुझको गुलशन की सैर कराऊं
0: जी।
1: ये अलका याग्निक और किशोर कुमार की आवाज में है
0: जी। बिल्कुल जी। गुना एफएम में फोन करने के लिए धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो एफएम गुना
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल जी।
1: मैम शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम आपसे।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ। आप क्या कार्य करते हैं?
1: मैम एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपके कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: जी जी, चलिए। तो आपने आकर एफएम गुना में फोन किया कौन सा गीत सुनने के लिए?
1: मैम एक गाना रहेगा, सोचेंगे तो मैं प्यार करें के नहीं।
0: जी जी जी, फिल्म का नाम?
1: जी मैम फिल्म का नाम तो नहीं पता, पर गाने के बोलिए।
0: जी जी, चलिए। एफएम गुना में फोन करने के लिए धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार
1: जी, मनोज कुशवा बोल रहा हूँ, श्रवण से।
0: जी जी बताइए, कैसे हैं मनोज कुशवा जी?
1: बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है और क्या।
0: हाँ गर्मी तो बहुत ज्यादा है,
1: बहुत ज्यादा गर्मी है
0: जी। जी सभी में ही है आपके यहाँ क्या? सभी पूरे भारत में ही गर्मी है। ये बताइए, आपने हमें एफएम गुना में फोन किया, कौन सी फरमाइश लेकर आज आपने हमें फोन किया है?
1: जी पिक्चर का नाम है रणभूमि।
0: जी चलिए, गुना एफएम में फोन करने के लिए धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जी आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: मैं लक्ष्मण कुशवा कुमराज से।
0: जी जी लक्ष्मण कुशवा जी, आपने एफएम गुना में फोन किया है, तो आपने कौन सा गीत सुनने के लिए हमें फोन लगाया?
1: मेरे को सुना है मैं मुझे क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा।
0: जी फिल्म का नाम। गुना एफएम में फोन करने के लिए धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो।
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताएं कौन बोल रहे हैं?
1: बाबलू बोल रहा हूँ जी। आवाज ठीक
0: जी, बबलू जी बताएं कैसे हैं?
1: है जी, काम चल रहा है।
0: जी, आपने एफएम गुना में फोन किया, अपनी फरमाइश बताएंगे। कौन सा गीत सुनने के लिए आपने आज हमें कॉल किया?
1: वो है फिल्म है गोरा काला,
0: जी,
1: उसका एक गाना है धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: जी। चलिए, एफएम गुना में फोन करने के लिए धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हम खेती बाड़ी करते हैं भाई।
1: अच्छा, तो अभी खेती बाड़ी में आप क्या कर रहे हैं?
0: हाँ अभी तबीयत खराब है, अभी घर पे ही है।
1: जी, अभी
0: मनी
1: मौसम,
0: बैठे बैठे क्या मनी है, चलो फोन लगा लिए सर।
1: जी, आप मतलब अभी रेडियो सुन रहे हैं, फ्री हैं अभी। तो आज
0: जी
1: आपने हमें फोन किया आकाशवाणी गुना में, तो आपने कौन सा गीत सुनने के लिए हमें फोन किया?
0: आप सुना देना। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं।
1: जी,

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो एफएम गुना, नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राजूलाल मेहर, गांव भिलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, राजस्थान से।
1: हाँ
0: जी, बताइए क्या करते हैं आप राजूलाल जी?

0: कार्य करते हैं आप?
1: हम कृषि का कार्य करते हैं।
0: जी जी जी।
1: और कृषि का कार्य तो समय हो गया, लेकिन अब गहरी जोताई हो गई है मूंगफली की बुवाई के लिए।
0: जी जी जी, मूंगफली बो रहे हैं। ठीक है, तो आपने आज गुना एफएम में फोन किया, तो बताएं आपकी पसंद का गीत।
1: कोई ऐसा एनिवर्सरी पर कोई गीत चला दीजिए।
0: एनिवर्सरी पर?
1: जी जी, क्योंकि हमारे भाई की कल एनिवर्सरी थी।
0: जी जी जी
1: जी, तो कोई वाला गीत चला दीजिए।
0: जी बिल्कुल, चलिए आकाशवाणी गुना में फोन करने के लिए धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो एफएम गुना
1: जी, नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्कार
1: जी, गाना सुनने मैडम जी।
0: जी आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं जगत सिंह चौहार, ग्राम पेपलिया, तहसील बेगमन, जिला रायसेन।
0: जी जी जी, आपने कौन सा गीत सुनने के लिए आज हमें फोन लगाया है?
1: मैंने मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी।
0: जी
1: ये मिल जाएगा ना, फिर दूसरा
0: जी
1: बताएं।
0: जी बिल्कुल, कौन सी फिल्म का गीत है आप बताएं?
1: जी वो है

श्रोताओं, ये था आज का हमारा रिकॉर्डेड फोन इन प्रोग्राम हेलो एफएम गुना। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत की थी अमिता तोमर ने। कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग था रजनी कैथुनिया का, प्रस्तुति सहयोग था हरिशंकर शिभरे का और प्रस्तुतकर्ता थी राजकुमार कौशल।

0: हेलो एफएम गुना।
1: अभी आप सुन रहे थे रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना। प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं आकाशवाणी मुंबई के संग और सुनते हैं देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती के विविध रंग अब से कुछ ही पलों में।

चाहे यार करो, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार

ग्रेट फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शैलेंद्र सचिन देव बर्मन, शकील बदायूनी का लिखा आदमी फिल्म का नगमा, नौशाद मोहम्मद रफी।

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब तराना फिल्म का गाना, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: आइए सुनिए मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।
1: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबार आए तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए, तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं।
0: क्या बात है, क्या तो, मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग
1: तो
0: क्यों है?
1: वहाँ इंस्टेंटली सब ने पसंद किया
0: जी,
1: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है।

0: जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूं और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा, मुबारक का खत लिखा, और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो
1: जी
0: तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ।
1: जी जी,
0: कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की।
1: क्या बात है, वाह।
0: कहता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी
1: वाह
0: दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।
1: क्या बात है साहब, क्या बात।
0: तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है
1: जी,
0: लेकिन कहानी का जो मकसद है
1: जी जी
0: वो आपके इस शेर से मैंने ले लिया है, वो पिक्चर का टाइटल होगा आस का पंछी।
1: क्या बात है,

0: जैसे मैंने कहा कि उजाले उनकी यादों के यादों के बारे में एडजेक्टिव्स बहुत से सुने थे, इसी तरह आस का पंछी मैंने पहली बार सुना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
1: क्या बात।
0: अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
1: वाह क्या बात है, ये सुबीर सेन की आवाज है,
0: सुबीर सेन
1: जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

हमारी आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: ये
1: बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों का ये जादू रहा कि जब भी उन्होंने ए लव से अपनी फिल्में बनाई तो वो फिल्में बहुत ज्यादा चली और उन फिल्मों का अपना एक जादू रहा है। अब जे ओम प्रकाश की बातें की, विविध भारती के खजाने से मैटिनी शो कार्यक्रम में आपके लिए गुलजार साहब का एक बहुत ही पुराना और रेयर इंटरव्यू लेकर आया हूं। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं। मैटिनी शो की ये पेशकश।
0: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: देखिए गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ तो पूछूं?
3: छोटे जी मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया हूँ यहाँ के।
2: मैं कुछ पूछूंगा। हाँ है? अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
3: छोटे जी बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ।
2: हाँ।
3: कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते

0: आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
1: छोटे जी, बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ, कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते पे निकल जाता है।
0: हो जाता है, हो जाता है।
1: जैसे
0: तो आप तो जानबूझ करके आए,
1: म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे। हाँ। तो हारमोनियम पे बैठ के जब तर्ज बनानी शुरू की तो मालूम हुआ कि गाना बड़ा अच्छा था। अच्छा। गायक बन गया,
0: गायक बन गया,
1: ऐसा होता है। हाँ। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लेखक ही की हैसियत से आया था।
0: अच्छा।
1: और ये कि फिल्म लाइन ही मैं लेखक बनूं, ये कोई तमन्ना नहीं थी।
0: अच्छा।
1: साहित्य में ज्यादा बनाना चाहता था।
0: ठीक ठीक।
1: और लिटरेचर ही मैं रहना चाहता था। कविता लिखता था, शायरी करता था और साने भी लिखे।
0: वाह।
1: लेकिन कुछ हल्का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता गया और कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई मेरी जबान की, क्योंकि मीडियम मेरा उर्दू का था।
0: ठीक।
1: जिसकी जगह कम होने लगी और रोजगार के लिए कुछ तो ढूंढना था। आखिर सिर्फ कविताएं लिख के तो पेट नहीं भरता था।
0: जी।
1: तो उस हल्के में से एक रास्ता ये निकला कि भाई कहीं कोई कविता की जरूरत हो तो हमसे भी, कलम हमने कान पे रखी है।
0: हाँ।
1: हमसे भी कुछ लिखवा लो।
0: हाँ, ठीक।
1: सुबह बाजार में हाँक लगाते गुजरते।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमलदा के पास ले गए।
0: अच्छा।
1: बिमलदा से आप शायद नाम
0: सुना, बिमल राय
1: जी। हाँ।
0: अच्छा।
1: उन्हें हम बिमलदा कह के बुलाते थे और उनसे मिले। वहां पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में।
0: कौन सा गाना?
1: बंदनी में मोरा गोरा अंग ले ले।
0: वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना था।
1: अब छोड़िए, क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा कह चुका हूँ अपने परिचय में कि इसी गाने से परिचय हुआ था।
0: हाँ।
1: और वो गाना लिखा और उन्हीं दिनों बिमलदा एक और फिल्म शुरू कर रहे थे, काबली वाला।
0: जी।
1: और मैं क्योंकि बेरोजगार था और शायद शक्ल सूरत से कुछ हमदर्दी हो गई उन्हें।
0: जी।
1: कि लगा कि ये कुछ भूखा है।
0: जी।
1: तो मुझसे पूछा कि भाई और क्या करते हो आजकल? मैंने कहा जी कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ जो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो रोजी कैसे चलती है?
0: जी।
1: तो भाई जहाँ लफ्ज जोड़ते हैं वहां दो वक्त का खाना भी जोड़ते हैं।
0: सही बात, सही बात।
1: तो तुमने बुला लिया कि भाई तुम ऐसा करो, मैं हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं काबली वाला, तो उसमें असिस्टेंट हो जाओ हमारे साथ।
0: जी।
1: और बड़ा अच्छा मौका था, जाहिर है।
0: आप यहाँ पहुंच गए। हो गया।
1: और वहां असिस्टेंट होने के बाद ये जरूर महसूस हुआ
0: जी
1: कि लेखक की जगह अपनी है।
0: हाँ।
1: लेकिन फिल्म का मीडियम सिर्फ लेखक का नहीं।
0: अच्छा।
1: वो जो खुद मुख्तारी महसूस होती थी शायरी करने में।
0: हाँ।
1: वो महसूस हुआ कि फिल्म में तो नहीं होगा।
0: अच्छा। हाँ, तो फिल्म के हिसाब से लिखना पड़ेगा।
1: तो एक सिचुएशन देंगे, कहानी कोई और लिखेगा, पिक्चराइज कोई और करेगा, एक्टिंग कोई और करेगा।
0: सही बात, सही बात।
1: तर्ज कोई और बनाएगा, मैं चाहे किसी धुन में गुनगुनाऊं।
0: ठीक ठीक।
1: तो महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी अगर चाहिए और खुद जो कहना चाहते हो वही कहना है।
0: हाँ।
1: तो फिर इस मीडियम को सीखना चाहिए।
0: हाँ, मतलब फिर आपने निर्देशन तो, भी
1: जी हाँ, वहां से बस डायरेक्शन में बिमलदा के साथ हमने
0: अच्छा
1: सीखना शुरू किया और लिखते रहे साथ। हाँ? में
0: लिखते तो आप अभी हैं और लिखते रहेंगे आप।
1: तो मीडियम सीखने के बाद महसूस हुआ कि इस मीडियम में लेखक की अपनी एक हैसियत है और वो इस मीडियम को अगर जाने तो लिखे।
0: अच्छा। तो देखिए, इसी बात से एक बात और निकलती है कि जब लेखक की अपनी हैसियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशक की भी अपनी हैसियत है ना।
1: जा।
0: तो अब आप तो दोनों हैं, तो आपकी दोनों हैसियत कभी आपके सामने आई काम के दौरान?
1: जी हाँ, दोनों शख्सियतें।
0: कभी उनमें कोई क्लेश हुआ?
1: जी,
0: लेखक और निर्देशक।
1: वैसे छोटे जी, आप तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं बीच में।
0: अरे आप ही लोगों से समझा बड़ा साथ साथ बैठ के।
1: दोनों का झगड़ा तो होता है, दोनों शख्सियतों का
0: होता है ना।
1: जी हाँ।
0: अच्छा।
1: और अक्सर ये हुआ है कि जो लेखक है ना मुझ में,
0: जी
1: वो पकड़ लेता है।
0: वो
1: पकड़ लेता है इसलिए।
0: जी हाँ। अच्छा।
1: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है। जो बात आप कह रहे हैं, जो ख्याल कह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अब आप शॉट चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए, कोई भी चालाकी कीजिए, कैमरा कहीं भी रख के आप बहला तो लेंगे देखने वालों को, लेकिन वो बात बहुत जरूरी है और वहां पे आगे पकड़ लेता है वो लेखक।
0: अच्छा।
1: और उसका बड़ा फायदा है कि जो बात कहनी है उसमें एक मकसद और मतलब होना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा। तो गुलजार भाई, अब साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि फिल्मों में आने के बाद जब आप लेखक और निर्देशक बन गए तो फिर आपको ये दुनिया मतलब अब कैसी लगती है, जो पहले आपने सोच रखी थी ऐसी है या कुछ अंतर?
1: वैसे दुनिया बड़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छी है।
0: अच्छा।
1: और रंगारंग है।
0: हाँ।
1: और अंग्रेजी में।
0: अच्छा।
1: फैसिनेटिंग है।
0: हाँ भाई,
1: बहुत फैसिनेटिंग।
0: अच्छा।
1: और इसलिए कि एक चीज कहने के लिए कविता, तो मैंने कागज और कलम ली और ख्याल को उस पर कलम बंद कर लिया
0: जी।

0: लेकिन फिल्म के लिए जो ख्याल मैं कहना चाहता हूं और फिल्म में सेलुलाइट पर उसे डालना चाहता हूं, उसके लिए मैं अकेला नहीं हूं।
1: अच्छा,
0: अब उसके लिए मुझे एक पूरी टीम बनानी पड़ती है।
1: हाँ,
0: जाहिर है उसमें कैमरामैन भी है, एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और दूसरे कर्मचारी टेक्नीशियन है जितने
1: सभी उसमें शामिल,
0: और वो सारे जब तक आकर एक सुर पे न मिले और एक सम पे धा ना पड़े तो बात नहीं बनेगी। तो वो एक धा मारने के लिए वो सात आदमियों को जोड़ना पड़ता है और सातों के सातों की उंगली वहीं पे आगे पढ़नी चाहिए तब बात बनती है।
1: सही बात है।
0: इसलिए वो बहुत फैसिनेटिंग है।
1: सही बात,
0: क्योंकि एक काम करने के लिए फिर मुझे वो दूसरे का मीडियम समझना पड़ता है। हाँ। उसमें मुश्किलात समझनी पड़ती है, म्यूजिक डायरेक्टर की क्या है, कैमरामैन की क्या है, आर्ट डायरेक्टर की क्या है। तो ये तमाम जब दूसरे मीडियम मिल जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये बहुत से फाइन आर्ट्स सारे के सारे जो हैं वो फिल्म में एक में जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा गुलजार भाई, एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि जब से बहुत ज्यादा मारधार, खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है, तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है ना,
0: बहुत चर्चा।
1: तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
0: इसके विचार दो तरह से हैं।
1: पहली तरह
0: ये है कि हमारी कुछ नौकरी जो है ज्यादा महफूज हो गई है, खासतौर पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता रहा।
1: अच्छा,
0: तो जाहिर है कि अगर वो सेक्स और वायलेंस के ऊपर पाबंदी पड़ेगी तो कुछ नौकरी मुझे और मिल जाएगी, मुझे ज्यादा साफ सुथरी फिल्में बनानी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए, वही लेखक का ख्याल
1: जी,
0: कि भाई ये है क्या ये जो वायलेंस है, तो सच पूछिए वेस्ट की फिल्मों का बहुत असर है हम पे।
1: अच्छा अच्छा,
0: और वो प्रोपोगेट करते रहे हम।
1: अच्छा,
0: और वो दिखा के ये वायलेंस से एक झूठा जोश पैदा करके ऑडियंस को कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्हें बस मुक्त कर दो, उसमें मदहोश कर दो और निकल जाओ।
1: ये चीज,
0: लेकिन उसके असर जो हैं वो बहुत बुरे हैं।
1: अच्छा, वो दूसरी बात हुई।
0: और जो चर्चा है वो यही है कि साहब उस पर पाबंदी लग रही है। वो पाबंदी लगने से जितनी सफाई हो रही है, अगर ये हो गई इसी तरह से
1: जी,
0: तो मेरा ख्याल है कहीं ये सोचना पड़ेगा
1: जी
0: कि जिस जो जिंदगी हम जीते हैं
1: जी,
0: क्या उसमें लिखा जा सकता है, क्या उसके बारे में फिल्में भी बनाई जा सकती हैं?
1: वाह वाह,
0: जो हर फन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: वाह,
0: क्योंकि जब तक कोई फन जिंदगी में से निकल के नहीं आएगा
1: जी,
0: वो बनावटी रहेगा।
1: हाँ ठीक,
0: और ये इस तरह की फिल्में निहायत बनावटी लगती हैं। जिस तरह के डेंस, पता नहीं मुझे तो तजर्बा नहीं, शायद किसी को हो
1: जी,
0: जो डेंस और वो स्मगलर्स के डेंस लगते हैं और जो देखते हैं फिल्मों में
1: जी,
0: मैंने अभी तक हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं देखे।
1: अच्छा,
0: शायद कहीं मेरी नजर से नहीं गुजरा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके विचार से सेंसर की ये पाबंदी फिल्मों के हक में कैसी रहेगी?
0: जी, फिल्मों के हक में भी अच्छी और मेरे हक में भी अच्छी है, मेरी नौकरी अच्छी पक्की हो जाएगी।
1: अच्छा गुलजार भाई, आपने तो विदेशों में भी कई फिल्मी मेले देखे हैं, अभी पिछले दिनों आप ताशकंद भी गए थे, तो वहां यानी दूसरे मुल्कों में भारतीय फिल्मों को कैसा समझा जाता है, यानी हमारी फिल्मों के बारे में वहां के लोगों के क्या विचार होते हैं?
0: खास तौर पे ताशकंद में
1: जी
0: हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया।
1: अच्छा,
0: बहुत अच्छी तरह अपनाया गया।
1: अच्छा,
0: और उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे जो स्टार्स हैं यहाँ के,
1: हाँ,
0: वो वहां भी बहुत पॉपुलर हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे एक तो राज कपूर साहब
1: जी,
0: और राजीव तो रूस में मतलब उसी तरह से घेर लिए जाते हैं आवाम से जिस तरह से
1: यहाँ पे। वाह,
0: और जो नए अदाकार वहां गए हमारे साथ, उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की।
1: वाह वाह,
0: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहां दिखाई गई, जगह जगह गए हम
1: जी,
0: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
1: अच्छा,
0: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद
1: जी,
0: लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहां बेच सके।
1: अच्छा,
0: या उनके सौदे किए जा रहे थे या बातचीत चल रही थी।
1: अच्छा,
0: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी करामद है।
1: करामद है, और साहब हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में बढ़ती जाएगी
0: जा।
1: अगर ऐसी तरक्की होती रही। गुलजार भाई, एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही है?
0: कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है।
1: हाँ, है ना,
0: और
1: हाँ,
0: दोनों को जांच लेना चाहिए।
1: हाँ, जांच लीजिए।
0: कर सकती में तो ये है कि हर

0: जी
1: एक बड़ा मकसद ले सकती है।
0: ठीक।
1: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
0: जी
1: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं।
0: ठीक।
1: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगी या एक बार तो ये महसूस होने देंगे कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची,
0: वाह क्या बात कही,
1: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपके कौम क्या है, कम से कम ये तो जान लें।
0: ठीक।
1: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ, ये लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो हिंदुस्तानी हैं और बाहर की फिल्मों को उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहां तक पहुंचना है या क्या करना चाहिए।
0: जी।
1: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो होना चाहिए। और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है।
0: जी।
1: और कर कितना रही है उसमें ये कि कोशिश बहुत है।
0: अच्छा।
1: लेकिन पहुंच कम हुई है।
0: हाँ ठीक है।
1: मतलब उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं, उम्मीद होगा।
0: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई, आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे जो कदम रखा था गाना लिखा था।
1: जी हाँ।
0: और आप कवि हैं, शायर हैं।
1: जी हाँ।
0: तो हम चाहेंगे भाई अंत में कि दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाए आपकी आपकी जबानी तो क्या हर जाए।
1: छोटे जी हर्ज तो कुछ नहीं
0: जी,
1: अच्छी बात है।
0: अच्छी बात है ना।
1: अगर उन्हें अच्छी लगे।
0: अरे लगेगी,
1: नज़्म में आपको सुना देता हूँ।
0: अच्छा।
1: और सुनने वालों तक भी पहुंच जाएगी।
0: हाँ पहुंचे रहेगी।
1: वो जो शायर था।
0: अच्छा। वो जो शायर था
1: बहकी बहकी सी बातें करता था, मेरी तरफ ना देखिए। वो जो शायर था बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पर रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें।
0: वाह।
1: जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते।
0: वाह।
1: और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
0: वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुलजार भाई आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली है, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी ओर से। और आप समझो समय भी हो रहा है तो अब श्रोताओं
1: फिर मिलेंगे
0: फिर मिलेंगे। अच्छा नमस्कार।
2: इनसे मिलिए आज के इस कार्यक्रम में आपने फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे छोटे।
3: मुसाफिर हूँ यारो।
4: न जाने कितने बरस पहले गुलजार साहब से की गई ये बातचीत संग्रहालय से निकालकर मैटिनी शो में मैं आपके लिए लेकर आया था। और अब गुलजार साहब के इस गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। परिचय फिल्म का गीत आर डी बर्मन की तर्ज किशोर कुमार

0: बैठी शो करके।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।

0: में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आइए सुने यादों की महफिल।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में।

0: साहिर लुधियानवी के बोल थे, फिल्म का नाम दीवार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: योगेश के बोल थे सलील चौधरी की तर्ज फिल्म का नाम अन्नदाता।
1: सब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगी, गुजर जाए दिन
0: दिन की इस भागदौड़ में 12:38 विविध भारती सुरीला सफर।

la la la la la la la la la la. यू न शर्मा है लागे अपनी गोरी गोरी बाहें, यू न शर्मा है लागे।

की दुनिया है, जिंदगी में डूबा है। बात जो हम कह न सके कह रही है, ये निगाहों हम चाहे जो कुछ को हम चाहें।

खुशियाँ मना सकते हैं अपने ये गम दुनिया को।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता है।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत नीरज का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी और लता मंगेशकर की आवाज। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की जो इबारत है वो है, कितना अच्छा हो कि आ जाए रिमझिम फुहार। बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बूंदों का है त्योहार। बादल की डोली पर आती है बरखा रानी, मन झूम उठता है जब बरसता है पानी। तपती धरती कर रही शिद्दत से इंतजार, कब छाएंगे मेघा, कब होगी बूंदों की बौछार। इस बार सावन ऐसा आए, घटाओं के संग खुशियां लाए। चलो बारिश का त्योहार मनाएं, हम सब मिलकर बारिश के गाने गाएं। आसमां अब के धरती पे लिख दे हरी कहानी, झूम के छाए घटा और टूट के बरसे पानी। अब समझ गए होंगे कि इतने सारे शब्द हैं जिनके जरिए हम गानों की डोर को तान सकते हैं।

अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कौन कौन से शब्दों पर आज गाने हो सकते हैं, पर यह तो तय है कि आज बारिश के इंतजार की बात है और इतने सारे शब्द जिन पर बहुत सारे गाने हो सकते हैं। सबसे पहले वो बात जो हमारी और आपकी, हम सब की बात है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहला गाना जो है वो गाइड फिल्म से आ रहा है। गाइड फिल्म किसके उपन्यास पर बनी थी, एक तो ये बात, दूसरी देवानंद और वहीदा रहमान के किरदारों के नाम क्या थे इस फिल्म में।

जरा सोचिए कि बिल्कुल जरा सा दो मिनट का ये गाना है, लेकिन ये गाना बारिश के लिए हम सबकी पुकार को एक तरह से आवाज देता है और बहुत सारे श्रोताओं की आज की इबारत को लेकर कमेंट्स आए हैं और उसके अलावा हमारे सवालों को लेकर भी बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं और ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आपने जैसे गाइड फिल्म का गाना सुना लमेघ थे, इसी तरह का एक और गाना था आपको बताना है फिल्म का।

पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। गुलजार साहब ने लिखा, पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना है और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छांव में फिल्म और 1958 में आर के नारायणन का द गाइड आया था। और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतजार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज गर्मियां इससे पहले देखी थी? और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है, ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद एसडी बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है, आई बहार आई बरखा बहार करे अंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाजा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है, बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है, मिट्टी की पहली सौंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंडक है और बस यूं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, दो दिन से अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है। केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही है कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खयाम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज्यादा

गर्मी पड़ी है और हालत खराब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में देखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से वाकई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। गर्मी तो हर साल लगभग एक सी पड़ती है, ये बात अलग है, हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं और सामने जो गर्मी है उससे हम परेशान होने लगते हैं। खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है। दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना यह है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा जाला खोटा पाउसाला मोटा, जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीला सफर की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने, और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं रुपेले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने।

सारा गाना और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुंबई के ज्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूं इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है, एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नजर आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा क्योंकि ये जो इलाके नजर आते हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है, बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीलिए ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें हैं और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम छम छम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारी वारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर
प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहां प्रेरक चीजें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारे

में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है। वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते, और जब वो चली जाती तो उसे रोकते बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से खत्म हो गया, और एकदम से जब गाना खत्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे खत्म हो गया। पर बहुत मजा आया, और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनों के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं, जैसे निस्दिन देख रहे हों बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने

के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है, तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नजरों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनकी नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ और आपको वहां वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो पंजाब में रहते हैं, वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूं क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किस जगह बिताना पसंद करते हैं ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करौंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में है और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती है कि माँ के घर जाती हूँ, वहाँ नदी बहती है और उस नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता ये कह रहे हैं कि ऊपर बरस गरज रहे हैं बादल और उनके बरसने का इंतजार है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि प्रतिदिन सुरीला सफर कार्यक्रम में जो इबारत तैयार की जाती है वो कौन तैयार करता है? भाई जो कार्यक्रम पेश करता है वही उस इबारत को तैयार करता है, यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि हमें गीत सुना है पर हम बताएंगे नहीं, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हो कि नहीं। ये बड़ी प्यारी बात है, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हैं कि नहीं जो हमें सुनना है और जो हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही सही है, देख लेते हैं भाई कि हम सुनवाते हैं कि नहीं, कहीं ये वाला गाना वो वाला गाना तो नहीं। ये दो गायिकाएं, इनका नाम बताएं और साथ में फिल्म का नाम भी। सुरीला सफर, बारिश का इंतजार।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन

साथ की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है। बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

नाज़ में लिखा गया है, एक श्रोताएं लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती है लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतजार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीजें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे

अभी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है, और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

0: गया। और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में, और आप सभी की बातें भी तो जाननी है।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीला सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो, उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहे फैला लें और जितना चाहे सिकोड़ लें। चाहे तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए, जैसे ही वो मुड़ती है कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है पर व्यर्थ, संभव ही नहीं है ये, क्योंकि बूंदें तो है ही नहीं, वहां तो बस धारा है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है, वहाँ ना पूर्णता है ना अपूर्णता, फिर क्या है वहाँ? वहाँ जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है, हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते, उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। बैठक से पहले ब्रिक्स वाटिका में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि इस बैठक का संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम।
1: ब्रिक्स का ये सम्मेलन जिसमें आज एक डिक्लेरेशन होगा और दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है, ये ब्रिक्स वाटिका में आज प्लांटेशन सभी हमारे सदस्य देशों ने, पार्टनर कंट्रीज के मित्रों ने किया है, ये आपस में स्नेह, सद्भाव, मैत्री और प्रेम का प्रतीक रहेगा। और संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम। और इन पेड़ों की तरह हम धरती को बचाने का काम करते रहें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी।
2: मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूँ, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। एनटीए ने उनको और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तय किया है।
0: प्रवास के दौरान आज श्री प्रधान ने शूटिंग एकेडमी से खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं सूरजनगर में भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गृह विभाग की महत्वपूर्ण आईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। अब खबर मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावनाएं जताई हैं। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में श्योपुर, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी समेत कई

जिलों में कल आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित ओंकारेश्वर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल ओंकारेश्वर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आगरमालवा जिले में आयोजित किए जा रहे शिविरों के तहत कल जिले के ग्राम बापचा, डोंगरगांव, सुधवास, सोहतकला और सुसनेर में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए और शिवपुरी जिले के पोहरी में कल संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन आपदाओं की तैयारी के संबंध में विकास खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे, हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का कड़ा विरोध किया हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे।

0: उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
3: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस, डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
2: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और CCTV तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश

0: मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने

0: सिद्धू को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोलते संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुने मनचाही गीत। मनचाही गीत
1: मनचाहेगी।
2: मन चाहेगी
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर।

और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जूंधली और आरती जूंधली की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मनचाही गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: हैं। मुंजाय गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूनून और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मनचाही गीत
2: मन चाहेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी?
1: इसके बाद भी क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छू जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार, सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, दुत्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यही विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र सपनी की आज्ञा का पालन।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता

0: थी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म भीष्म भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: भाई, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना ठंडा, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है।
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
2: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
3: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: कुलदेवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
3: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
2: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
3: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो।
2: जो आज्ञा।

0: बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी न बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी। जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे वो और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है। जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं। वो

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं।
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
0: गांधारी।
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबा

0: अलका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
1: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्र।
0: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
1: तुम नहीं जानती कांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
0: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।

0: शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रभंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: पितृष्ट।
1: आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
0: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
1: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
0: क्या?
1: अच्छा आप वही रुकिए, मैं आ रही हूँ।
0: क्या हुआ, गिर पड़ी?
1: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
0: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
1: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
0: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते, माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल हरिण भ्रमर न जाने किस किस से दी थी।
1: महाराज,
0: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूँ लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
1: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
0: क्या?
1: महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
0: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
1: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
0: क्या?
1: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है, मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
0: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
1: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
0: मैं अंधत्व का दुख जानता हूँ गंधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से इस संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
1: नहीं महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गंधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
0: हूं। गंधारी देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सत्य, असहनी है ये सत्य।

0: की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
1: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
1: ओह, पगली कहेगी। क्या तू जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कांधारी,
1: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
2: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
2: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं देगी गांधारी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
2: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
2: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
2: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
2: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
3: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
2: कहो सूत।
3: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी? क्या अपमान,

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश।

0: आंखें कैसी हैं?
1: बहुत मोहक। काश मैं देख सकती।
0: किस पर क्या है?
1: किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। पारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
0: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
1: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
0: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
1: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, न जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं, अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्त नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप, टेरेंस लुविस।
3: लहू लग गया, लहू लग गया।
2: टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में, अब ये जग गया, ए, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी। ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: आप कोरियोग्राफी करते थे
1: लेकिन
0: स्कूल्स में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
1: एकदम अलग सर,
0: उसके ट्रिक्स अलग होते हैं,
1: एब्सोल्युटली,
0: वो तो आप जानते नहीं थे,
1: एब्सोल्युटली।
0: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
1: फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
0: एक तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
1: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
0: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था,
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हां ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
0: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
1: करेक्ट,
0: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था,
1: करेक्ट,
0: आरडी बर्मन साहब का, और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
1: करेक्ट,
0: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
1: करेक्ट,
0: तो उन गानों पर उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ नयापन लाना और फिर उस पर डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
0: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
1: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके इनो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी, तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था। आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल एज अ कोरियोग्राफर। समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील, फील का गाना था।

पूरी फिल्म में डांस, एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था, और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ चीनो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये

चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी। और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग एक पहचान मुझे इस

0: नाम भी है हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे. लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे. कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले. और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है. क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था.
0: अच्छा अच्छा
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है. तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के, जहां पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियान के गाने, सभी मुझे पसंद थे. एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा.
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी. तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है. सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था. सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस बाय ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट. क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है. तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे.

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही
0: इस तरह के क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं किया।
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना,
1: हाँ,
0: एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसको,
1: हाँ, अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूं, मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूं, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूं और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूं कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ चीजें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक, और फिर मैं सोचता था कि ये जो मैं कर रहा हूं ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक, और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही अगर आप एक बार आठ काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू यूजिंग स्पेस, जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ। ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस

0: करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में, मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है।
0: छानना पड़ता है, दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझें कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया था कि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले, क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन होती है।
1: आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: पेरेंट्स, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर।

0: भैया एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से

0: चार काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ चार स्टेप करें या आठ स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा दो काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं, ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर यू नो झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो यू नो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं है उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो,
0: हाँ।
1: गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं वो गाना भी पुराना गाना है,
1: हाँ।
0: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
1: अजनबी।
0: हाँ अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता.
1: करेक्ट.
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं. लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं? मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है. आजकल के तारीख में आज के जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं. अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं. उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है. दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है.
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है.
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं. ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन. तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब. आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब. वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है. वो लोग भाप लेते हैं, तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही.
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है. क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया. एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू. And that's the one thing that I really admire about them.

0: दूसरे ऋतिक शाहिद ऑल वेरी गुड डांसर्स. रणवीर ऑल्सो इज वेरी गुड डांसर और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो इट्स नाइस टू सी द यंग डांसर्स. इट्स जस्ट दैट 19-20 का फर्क है लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: ठीक है.
0: हाँ, दूसरे एक जमाने हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बींग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनकी फिल्मों में पाकिजा में उनको नाचना है, तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट इज वन. मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्टकमिंग्स है. इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जी ने बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में यह है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज आई वुड से इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा मेहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वॉज आई वुड से ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना. वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपनी टीम को ही लेकर आऊंगी. वेर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस.

दोस्तों आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: छाया गीत में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मांगता है तो उसे मिलती है झिड़की। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं इन भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। एक ना एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है और होता है कुछ ऐसा हाल।
1: लो जी बुझ गई बिजली प्यार की, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, जिसे डस गई, जिसे डस

0: बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती हैं अपनी कमियां। 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया, बजाना न आया।

गले को गर्म कर ले, गले को गर्म कर ले, छोड़ अंग्रेजी में एक एटम, अंग्रेजी में एक एटम, अंग्रेजी में एक एटम।

0: Ay, absor, absor, absor, absor, lekin o jane man, hai jane man, kaante churi se khana na aaya, kaante churi se khana.
1: तो मैंने खुद करके देखा है और इसके प्रभाव भी देखे। जब आप अपनी बाकी की जिम्मेदारियों के लिए इतना वक्त निकालते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह आप 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप कल सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे और प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद
2: दोस्तों, अब सुनते हैं।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: तो नीलम बहन आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं रेणु बर्मन से ये लोकगीत।
2: मेरी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबिता शर्मा से ये लोकगीत, और आइए एक और लोकगीत आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं राजेंद्र जाटव।

पे बच्चे 20 और 10 की तो राजेंद्र जाटव काफी लाया, 10 की दे दी फीस। और 10 की तो राजेंद्र जाटव काफी लाया, 10 की दे दी फीस। हिसाब मेरा

श्रोताओं सुन रहे थे आप राजेंद्र जाटव से ये लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको एक और लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

वास्तव फिल्म से कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे सुन निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, समीर के बोल जतिन ललित का संगीत। और अब अगला गाना तराना फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, रविंद्र रावल का लिखा हुआ, धुन राम लखन की, आवाज शैलेंद्र सिंह की।

तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और इस कार्यक्रम का अगला गाना जतिन ललित का स्वरबद्ध किया हुआ है, गुलजार के बोल अभिजीत और नीरजा पंडित की आवाजें, फिल्म खूबसूरत।

0: जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म का शीर्षक गीत, गौहर कानपुरी का लिखा हुआ धुन राज कमल की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना प्रसारण केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए गए भजन सुनवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वाति मिश्रा के गाए इस खूबसूरत भजन के साथ।

वाकई में ये भजन सही कह रहा था कि ये चमक, ये दमक सभी कुछ सरकार यानी हमारे भगवान से ही है।

0: बड़ा ही खूबसूरत भजन अभी आपने सुना और इस भजन को अपनी आवाज से संवारा था उपासना मेहता ने।
1: क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते हैं या उन्हें सच भी करना चाहते हैं? आपके सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही क्रांतिवीर टाटाटोपे विश्वविद्यालय गुना में प्रवेश लीजिए। तो आज ही विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल www.kttb.in को ओपन करें और विश्वविद्यालय में प्रवेश लें। क्रांतिवीर टाटाटोपे विश्वविद्यालय गुना, जहाँ सपने बनते हैं हकीकत।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: नहीं झुमके
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
4: जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोताओं, गुना एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए गए भजन।

लखवीर सिंह लखा की आवाज में अभी आपने ये भजन सुना। और आइए अगला भक्ति रचना सुनते हैं दिव्या त्यागी की आवाज में।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अर्चना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुना 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम आज की शाम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। हमारी इस शाम की मुलाकात पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी कुछ सोचने पर मजबूर करती है और कभी किसी गीत की एक पंक्ति सीधे दिल को छू जाती है। तो आज के इस आधे घंटे में बातें भी होंगी, मुस्कान भी होगी, थोड़ा उत्साह होगा तो थोड़ा प्यार होगा और कुछ होंगे ऐसे नगमे जो सीधे दिल से उतर कर दिल तक पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संगीत का सफर। पेश है फिल्म इंडियन का सबसे खूबसूरत रोमांटिक गाना। गाने के बोल हैं दीवाना।

ना मैं ना था। शान और अलका याग्निक की सुरीली आवाज, आनंद बख्शी के बोल, आनंद राज आनंद का संगीत और सनी देओल शिल्पा शेट्टी की शानदार केमिस्ट्री वाला गीत।

बड़ा ही खूबसूरत सा गीत था फिल्म इंडियन का। आइए अब सुनते हैं फिल्म सूर्यवंशम का ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत पे संगीत है अनु मलिक का, समीर के बोल, और इस गीत को गाया है कुमार शानू ने।

श्रोताओं, गुना एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की शाम। आइए अब आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताने कि पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है। जी हाँ, इसीलिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो अपनी पहचान स्वयं ही बनाए, ना कि किसी पहचान के द्वारा काम को हासिल करें। तो अगला गीत है फिल्म गीत से, लता मंगेशकर की सुरीली आवाज, इंदिवर के बोल और संगीत बप्पी लहरी का।

अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कबीर सिंह से। श्रेया घोषाल की मधुर आवाज, अमाल मलिक का संगीत और इरशाद कामिल के बोल।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत। हम आपको बता दें कि आप गुना एफएम पर सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की शाम और मैं हूं आपके साथ आरजे अर्चना। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, ये गीत था फिल्म यादें का। इस गीत को गाया था सोनू निगम, अलका याग्निक ने, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत अनु मलिक का था।

0: तो श्रोताओ, लगे रहे मुन्ना बाई का ये खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने और संगीत था शांतनु का। तो इस खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम आज की शाम अब समाप्त होता है। FMN 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।
1: अच्छा बताओ, दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर दिल की।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह

0: जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अलमुर्गन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FMN 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, 7:21 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। आज की बात होगी मछली पालन कैसे करें और शासन की योजना का लाभ कैसे लें। सामयिक कृषि चर्चा में सब्जियों की तुड़ाई और पैकिंग का महत्व। इसके अलावा गुना जिले के जिलाधिकारी श्री किशोर कुमार कान्याल जी का किसानों को खेती के संबंध में संबोधन और भेंटवार्ता के अंतर्गत करौत के उन्नत कृषक कृष्णपाल सिंह रघुवंशी से समसामयिक कृषि पर बातचीत।

रात 8 बजे भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा सरकार के 12 साल होने पर एक विशेष श्रृंखला एपिसोड 13 और 8:35 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और 8:45 पर दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या और रात 9 बजे से सभा की समाप्ति तक आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आइए अब आपको कल के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। प्रातःकालीन बेला 5:53 पर शुरू होगी और 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा, 6:45 पर श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति में आप सुनेंगे अनुराधा पौंडवाल और भूपेंद्र सिंह का स्वर। लोक रंजनी कार्यक्रम होगा प्रातः 6:45 पर। कल के कलाकार होंगे नीलम वर्मा और साथी। प्रातः 7:21 पर कार्यक्रम होगा सुबह सवेरे। इस कार्यक्रम में जनउपयोगी सूचनाओं के साथ हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 7:50 पर विश्व रक्तदाता दिवस पर सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी से हरिशंकर शिवहरे की बातचीत। 8:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम फुलवारी। चर्चा होगी काम इतनी शांति से करें कि सफलता शोर मचा दे। 9:30 कार्यक्रम होगा एक फनकार, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे युगल गीत। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 10:05 पर आप सुन सकेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो FM गुना। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजकुमार कौशल। 11:00 से 6:00 तक आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 6:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें हम विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए गए भजन सुनवाएंगे। 6:30 पर विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा और 7:00 आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। रात 8:45 पर सरकार के 12 साल होने पर एक विशेष श्रृंखला का एपिसोड 14 आप सुन सकेंगे भोपाल केंद्र से। और 9:00 से सभा की समाप्ति तक आप विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना, भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन आज एक सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु, सहनीय खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनियमितताओं के बीच

0: ब्रिक्स देशों की ये बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। श्री चौहान ने बताया कि सदस्य और सहयोगी देशों के लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित कुल लगभग 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा के प्रश्न पर ब्रिक्स देशों के बीच कितना गहरा जुड़ाव और गंभीरता है।
1: ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, इस पर भी चर्चा हुई है। फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राजधानी भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। श्री प्रधान ने यहां मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय वो था जब देश को खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं खरीद ना पड़ता था और आज केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो के हिसाब से मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है।
2: आज हम एकत्रित हुए हैं भारत में विकास की, आत्मविश्वास की, प्रगति की एक उत्सव मनाने के लिए। बीते 12 साल से विश्व के अद्वितीय लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल 12 साल जब पूरा हुआ, उसके तहत पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया।
0: सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सहभागिता की। इससे पहले श्री प्रधान ने आज सुबह राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग के साथ शूटिंग अकादमी में खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा लागू किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी। प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए कल भोपाल के कुशाभाव ठाकरे सभागार में वृहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के MSME उद्यमियों, स्टार्टअप और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हित लाभ भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी उपस्थित रहेंगे।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है।
4: मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 22,000 पदों पर भर्ती के लिए

अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इवेंट, एग्जीबिशन और माइज के प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुंबई के सिडको एग्जीबिशन एवं एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 10वें डेसेनियल एग्जीबिशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 में एमपी टूरिज्म को कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देश के इवेंट, एग्जीबिशन और माइज सेक्टर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार यादव ने टीम के साथ ये पुरस्कार ग्रहण किया। महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहडोल जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर निवास के पास पुराने आरटीओ कार्यालय की भूमि पर 3.5 करोड़ की लागत से सुविधाओं से युक्त विशेष परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये परिसर महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पाद के प्रदर्शन और विपणन के लिए समर्पित होगा। लगभग 1 एकड़ भूमि पर परिसर का निर्माण होगा। परिसर में 32 दुकानें बनाई जाएंगी, जिसमें महिलाएं अपने हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, घरेलू सामग्री और अन्य उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। यहां 4 दुकानों के व्यावसायिक परिसर भी बनेगा, जिसके किराए से पूरे परिसर का मेंटेनेंस किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून की प्रवेशता की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आज भी राजधानी भोपाल में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जबलपुर में एक निजी संस्था द्वारा विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कल पशु कल्याण समिति, पशु क्रूरता निवारण समिति और जिला गौ पालन गौ संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई और नर्मदापुरम जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नवांकुर अभियान के तहत कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत रंडाल पहुंचकर सीड बॉल निर्माण गतिविधि में हिस्सा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि, नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना। भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ
1: 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को ममता रघुवंशी का नमस्कार। भैया बहनों, देखो मौसम अपनो रुख बदल रहा है, इतनी उमस पड़ रही है और जहाँ उमस भरे मौसम में हमारे

किसान भैया बरसात को इंतजार सोई कर रहे होंगे, तो अपनी अगली फसल की उनकी अपनी तैयारी भी हो रही होगी। कछु भैया और अनखो मूंग भी कट गई होगी और कछु काट रहे होंगे, और कछु भैया हमरे गहरी जुताई सोई कर रहे होंगे। तो ऐसे में अपनों जो कार्यक्रम सुन रहे होंगे किसान वाणी, तो भैया हम आप और ने बता दें कि आज हम बात करेंगे, आज की बात में मछली पालन कैसे करें और शासन की योजना को लाभ कैसे लें। जब विषय पे तो चर्चा होगी, लेकिन कछु सामायिक विषय पे भी बात करेंगे, तो सब्जियन की तुड़ाई और पैकिंग का महत्व, और जय के संगे संगे आप और अनखो सुनवाएंगे गुना के जिला अधिकारी श्री किशोर कुमार जी कान्याल खेती के संबंध में संबोधन करेंगे हमारे किसान भैया बहनन के लाने। और भेंट वार्ता में आप और सुन सकेंगे ग्राम करौत के उन्नत कृषक कृष्णपाल सिंह रघुवंशी से समसामायिक विषय पर बातचीत, और जाके अलावा आपके पसंद के लोक भजन और मौसम की जानकारी। तो भैया बहनों हम बात कर लें आज की जो बात है बाकी संबंध में, कि देखो खेती तो हमारी प्रगति पे निर्भर है, और कछु जामे आपदा आ जाते है तो हमारे किसान भैया ने कछु ना कछु व्यवसाय करने चाहिए खेती के संगे संगे। काहे के देखो हमारे साइड में कछु व्यवसाय होएगो तो हमें आमदनी भी हो जाएगी। तो भैया सबसे अच्छो कम लागत में करवे वाला व्यवसाय है मछली पालन। तो हम बात करें कि जो मछली पालन करें कैसे, तो हमारे भैया बहनन के पास हो तालाब, और अगर तालाब नहीं है तो खेत में गड्ढा होए और पानी को होए स्रोत, वामे आप मछली पालन की शुरुआत कर सकते हैं। जाके अलावा आप सबसे देखो पहले तो हमें सबसे पहले चुनाव करने हैं तालाब को, तो जब बात को ध्यान रखने हैं कि कम से कम 1-2 मीटर तक वहां में पानी होना चाहिए, फिर तालाब की सफाई करें और वहां में डालें चूना, पानी को आवागमन सोई अच्छो हो, जब बात को हमें ध्यान रखने हैं। अब बात आते है भैया मछली के बीज की, तो देखो हम मछली को बीज डालें, जाके लाने अच्छे बीज लें, जैसे राहू कतला मृगल कॉमन कार्प आदि प्रजातियां जाके लाने उपयुक्त हैं। और देखो भैया हमारे किसान भाई प्रमाणित मत्स्य बीज केंद्र से ही बीज खरीदें। तो भैया अब बात आते है मछलियन के भोजन की, साथ में इनकी देखभाल की, तो उनके लाने संतुलित आहार नियमित दें। देखो अच्छो भोजन दोगे तो मछलियां आपकी अच्छी होंगी। दूसरी बात उनके लाने पानी की गुणवत्ता बनाए रखें, समय समय पे इनकी इलाज की भी व्यवस्था करें। कह के देखो अगर एक मछली बीमार हो गई तो सबरी बीमार हो जाएंगी, तो मछलियों को कोई रोग ना हुए जैसे आप डॉक्टर से सलाह और मशवरा जरूर करें। अब हम बात करते हैं उत्पादन की, तो भैया हो सके तो 8 से 12 महीने में मछलियां बाजार में बेचवे योग्य हो जाते हैं, मतलब इतनी बड़ी हो जाते हैं कि आप आराम से बेच सकते हो। जाके लाने आप स्थानीय बाजार होटल और थोक व्यापारियों से बातचीत कर सकत। अब बात आते है कि देखो हम मछली पालन कर रहे हैं तो शासन की योजना को लाभ कैसे उठाएं। तो भैया बहन जा बातें जानते ही हैं कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालन तालाब निर्माण बायोफ्लॉक हैजरी फीट यूनिट आदि के लाने अनुदान यानी कि सब्सिडी दी जाती है। तो सरकार ने 2026 और 27 में भी जय योजना

खिलाने बढ़ो, बजट आवंटित करो है। और देखो जैसे लाभ का होंगे योजना से, तो यदि आप तालाब निर्माण या वहाँ में एक सुधार या मरम्मत भी करवाते हैं तो आपे सब्सिडी जरूर मिलेगी। और देखो भैया मछली बीज उत्पादन में भी आपे सहायता जरूर मिलेगी। जैसे आप मछलियन के बीज उत्पादन करते हो और दूसरे ने दे दो तो आपे सरकार जरूर सहायता करेगी। बायोफ्लॉक एवं RAS यूनिट पे भी अनुदान मिलत है। और भैया हो एक बात और है, जो मछुआरे होते हैं ना उनके लाने भी सरकार बीमा और अन्य लाभ देते हैं। अब जाके लाने का करने हैं, तो जाके लाने आवश्यक कागज जरूरी हैं, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज के दो फोटो और वहाँ में भूमि और तालाब संबंधित भी कागजात, मोबाइल नंबर और जाति प्रमाण पत्र। अब बात आते है कि आवेदन कहाँ करें, तो मत्स्य विभाग के कार्यालय में या जनपद पंचायत में या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। अब भैया देखो जे तो काम होगा वह तो हम तना काय की बात भी कर लें, तो एक एकड़ तालाब में अगर आप वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करत हो तो खर्च को निकाल कर अच्छी आय प्राप्त हो जाते है। जाके लाने उचित प्रबंधन से किसानन की आय भी बढ़त है और व्यवसाय काफ़ी सफल मानो जात है। तो भैया हो ये तो भाई मछली पालन की बात। और अब सुनत हैं कछु संदेश, लेकिन हम आप पहले बता दें कि जा कार्यक्रम के प्रायोजक है थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: देखो भैया, अब हम बात करते हैं सब्जियां की खेती में अच्छी उपज, तो सब्जियों की तुड़ाई और पैकिंग को महत्व जान लें। तो सब्जियों की खेती में अच्छी उपज के साथ साथ सही समय पर तुड़ाई, कटाई और उचित पैकिंग की बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे किसानों को बेहतर दाम मिलत है और उपभोक्ताओं ने भी ताजी एवं गुणवत्तापूर्ण सब्जी मिल जाते। तो अब हम जान लें कि तुड़ाई को महत्व क्या होता है भैया। तो किसान भाइयों, सब्जियों की जो तुड़ाई है, मतलब जो हम कटाई है, सही परिपक्वता और अवस्था में ही करनी चाहिए। मतलब कि अच्छी जब पक जाए फसल, तभी हमें बाय तोड़ने चाहिए। दूसरी बात यह है कि समय से तुड़ाई करोगे तो स्वाद, रंग और गुणवत्ता बनी रहेगी। जाके अलावा अधिक देर से तो तोड़ेंगे तो सब्जी कड़क हो जाएगी, यानी कि कर्री हो जाते है सब्जी, तो फिर बाबा बाजार में इनको दाम कम हो जाते हैं। और भैया, अगर हम सवेरे और संध्या के टाइम सब्जी तोड़ेंगे तो सब्जी ताजी बनी रहेगी, और संगे संगे खराब सब्जियां जो होते हैं ना, उन्हें हमें हटा देना चाहिए। मान लो कोई में कोई कीड़ा लगो है तो वहां से सबरी सब्जी खराब हो जाते हैं।

अब आप कहोगे कि जहां मैं पैकिंग को का महत्व हो, तो भैया बहनों पैकिंग आपकी अच्छी होगी, और जैसे मान लो परिवहन, मान लो कहीं बाहर भेज रहे हो, तो सब्जियां माँ में सुरक्षित बनी रहेंगी। और किसान भैया बहनों जाके लाने आप पे जो प्लास्टिक की डलियां आते हैं ना, वे तो लेना ही है, लेकिन आप ये अगर बांस की टोकरी मिल जाए या कछु गत्ता के डिब्बा मिल जाए, तो इनको उपयोग करोगे तो सब्जी सुरक्षित रहेगी। अब बात करें कि तुड़ाई तो हो गई, लेकिन पैकिंग में सावधानी भी रखना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात है कि साफ सुथरे और ताजे तेज धार वाले औजार से काटें। काहे कि भाई एक सी कट है, अगर वहां धार नहीं होगी ना, तो आपकी जो सब्जी है ना, इनमें कट लग जाएगा और वे वहीं से खराब हो जाएंगी। और सब्जियां ने ज्यादा धूप में भी ना रखें, काहे कि धूप में रखने से बेकार हो जाते हैं। और जो पैकिंग की आपकी जो सामग्री है ना भैया बहनों, वह तनख मजबूत हो, नहीं पता चलो कि रस्ते में वह निकल गई और बाकी

और हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग लगभग 100 एकड़ इसका इजाफा करेंगे। चूंकि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें लगभग लगभग 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट वो लोग एक साल में एक एकड़ भूमि से कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है। तो हम लोग लोगों को यही प्रेरित करते हैं कि आप जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उससे हटकर भी आप इस प्रकार की खेती बाड़ी करेंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होंगे। इसी प्रकार हमने एक दूसरा जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है थाइपिंग अमरूदों की खेती, उसको भी हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग लगभग 1 लाख पौधे अपने कुरान जिले में लगाए हैं। 50,000 तो हमने एसएजी ग्रुप के माध्यम से लगाए हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमारे कुछ किसान बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं और उनकी 8 से 10 लाख रुपए तक की इनकम एक एक एकड़ में एक साल में हो रही है। आप सोचिए, बहुत से किसान ये कहते हैं कि वो एक एकड़ में 50,000 रुपये का ही अधिकतम लाभ लेते हैं। बहुत रेयरली लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम 1 लाख रुपये कमाते हैं। तो अब हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल गुना जिले में उन्हीं के बीच में जो हमारे जागृत किसान हैं उनके द्वारा दिए गए हैं।

0: तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार बहुत से किसानों ने अभी सब्जी भाजी उगाना शुरू कर दिया है अलग टाइप की, उसमें भी उनका 5 लाख रुपए तक का इनकम एक साल में एक एकड़ में हो रहा है। कुछ लोगों ने जो हमारा सामान्य गुलाब होता है, ओपन खेती जो गुलाबों की होती है, वो भी कर रहे हैं, उसमें भी 5 से 6 लाख रुपए की एक एकड़ में एक वर्ष में इनकम हो रही है। तो हम सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने खेती के पैटर्न में परिवर्तन करें, जहां आपको अभी एक एकड़ में एवरेज 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं, वहीं पर आपका ऑप्शन है कि आप 5 लाख का भी ऑप्शन कर सकते हैं, 10 लाख का भी और 15 लाख का भी। आप जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी और ये सभी के लिए अच्छा है। और इससे बढ़कर एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। गुना जिले में इस समय लगभग 4000 किसान 4000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारे 20 BRC सेंटर्स भी हैं, इसके अलावा 30 जगह पर हमारे कृषि सखी भी हैं। प्रत्येक सेंटर में 2-2 सखियाँ होती हैं और वो सब प्राकृतिक खेती के बारे में ही जागृत लोगों को करती हैं। आजकल हम लोगों ने एक नया थीम दिया है, जो खाओ वही उगाओ। तो आप सोचिए, आप यदि वही उगाएंगे जिसको आप खाते हो, आप ये भी तो ध्यान रख रहे हो ना, जो आप खा रहे हो वही दूसरा भी व्यक्ति भी खाता है। तो ऐसी चीज़ उगाओ जो आपके लिए भी अच्छा हो, हेल्दी हो। इसी प्रकार हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं लोगों को, हर खेत में मेड़ और हर मेड़ में पेड़। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में खेतों के बीच में जो मेड़ होती थी उसमें बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, पर जैसे जैसे परिवारों में विभाजन हुआ, खेती बाड़ी का विभाजन हुआ, वो मेड़ छोटी होती चली गई और उसके बीच में से जो पेड़ थे वो कटते चले गए। समय आ गया है हम फिर से उस दिशा में आगे बढ़ें और मेड़ में, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो बरगद का हो, कई सारे पेड़ होते हैं जो आप लगा सकते हैं, आप लगाइए, छायादार भी रहेंगे, उससे जो उसकी मिट्टी उसके उपजाऊपन भी रहता है। इसी प्रकार हम बार बार एक चीज़ को और बोलते हैं, अब समय आ गया है कि जब हम खेतों में कटाई करते हैं फसलों की, चाहे वो पराली हो या नरवाई हो, हमें उस पर आग नहीं लगानी है। जो हमारे शेष टुंटल बचे रहते हैं उस पर आग नहीं लगानी है, किसी भी प्रकार से नहीं लगानी है। यदि आप शक्ति की बात करोगे तो हम बहुत संख्या में किसानों पर फाइन भी लगाए हुए हैं। अब हम कई बार सरकार बहुत सख्त भी होना चाहती है कि इसमें और भी हो सकता है, कई बार सरकार की योजनाओं का लाभ भी आपको ना मिले यदि आप अपने खेतों में जानबूझ के आग लगाओगे, और आप चाहो तो उसी से आप उसको कन्वर्ट कर आप पैसा भी कमा सकते हो, उससे भूसा चारा बना सकते हो। कई एजेंसीज हैं जो आपके खेतों में ही आते हैं, आपके खेत का जो वेस्टेड आपका जो बचा एग्रीकल्चर पार्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसे भूसा में कन्वर्ट करते हैं। कई लोग उससे फॉसिल ऑयल उसका क्या कहते हैं फ्यूल भी बनाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है, तो हमें उसको वेस्ट को जलाना नहीं है, उसको यूज़ करना है, उसको भी सोर्स ऑफ इनकम के रूप में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, आने वाला समय हमारे लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत तरक्की करने का है। गुना जिले के किसानों ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं और हम सब लोग उनके साथ बीच बीच में इंटरेक्शन करते रहते हैं। मैं रात्रि चौपाल में भी जब गांव में जाता हूं तो इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करता हूं। तो आइए आप और मिलकर गुना जिले में एक नई शुरुआत करते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ाते हैं और कृषि का जो मैंने बताया पैटर्न चेंज करके ज़्यादा लाभ का कृषि वाली चीजें हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो अभी आपने अपने कलेक्टर महोदय से संबोधन उनका सुना, उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई इससे जरूर लाभ उठाएंगे। और अब सुनते हैं एक गणेश वंदना।

0: देखो भैया, समय कम होने के कारण वंदना तो हम बाद में सुनवाएंगे। आप सुनत हैं करौत के उन्नत कृषक कृष्ण पाल सिंह रघुवंशी से सामायिक विषय पे कृषि चर्चा। तो आप भी सुनो और हम भी सुनत हैं।
1: नमस्कार किसान श्रोताओं, आज हम इस किसान वन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं करौत के उन्नत कृषक श्री कृष्ण पाल सिंह रघुवंशी।
0: भैया राम राम।
2: हाँ मैम। हाँ
0: भैया आप
2: हाँ
0: खेती किसानी करते हो,
2: करता हूँ।
0: अभी आपने खेती में अपने में कौन सी फसल ली है?
2: अभी मैंने गेहूँ लिए और चना लिए और सरसों।
0: अच्छा, तो अपने को कितना मतलब वो हुआ, मतलब अच्छी निकली फसल?
2: ठीक ठाक निकली,
0: अच्छा, कोई नुकसान,
2: नुकसान नहीं था।
0: कोई उगरा मुगरा?
2: नहीं
0: तो जैसे आप फसल हुई थी तो उसमें आप दवाई ववाई डालते हो?
2: हाँ, दवाई डाल देना। अब
0: अच्छा, तो अब आप क्या लेंगे, कौन सी फसल लेंगे?
2: मक्का की फसल लेंगे।
0: तो जैसे मान लो किसान के लिए जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अब आप अपने खेती किसानी में कौन कौन से कार्य करेंगे?
2: अभी तो अपन ने पहल वो फेंकते हैं, राखोड़िया फेंकते हैं,
0: वो क्या होता है?
2: खाद होता है ये।
0: अच्छा, खाद होता है,
2: हाँ
0: तो आप ऐसे ही डाल दोगे खेतों
2: हाँ
0: में?
2: खेत में ऐसे में फेंकते हैं उसे, फिर उसके
0: अच्छा
2: बाद उसमें पंजा फेरते हैं।
0: अच्छा पंजा फेरते हैं, और पंजा के बाद?
2: पंजा के बाद में फिर पानी का इंतजार करते हैं,
0: अच्छा, और मान लो पानी नहीं बरसा तो?
2: तो कुछ नहीं हुआ फिर ट्यूबवेल है।
0: अच्छा, मतलब आपके पास पानी की भरपूर व्यवस्था है,
2: हाँ
0: तो ठीक है। पानी के बाद?
2: पानी के बाद

0: जमीन को हांकते हैं,
1: अच्छा
0: फिर एक आदमी हिलाते हैं।
1: अच्छा अच्छा तो जैसे आप जमीन को प्लेन करते हैं खेतों को। अच्छा, तो जैसे आप बीज की बात कर रहे हैं, तो बीज आप घर में तैयार करते हैं या बाजार से खरीदते हैं?
0: बाजार से लाते हैं
1: आप
0: कभी।
1: बाजार से लेते हैं, तो मतलब जैसे कोई प्रमाणित दुकान से लेते हैं?
0: नहीं, अपना दुकान से।

0: दुकान से लेते हैं।
1: नहीं, प्रमाणित दुकान से ही लेते हैं।
0: अच्छा, प्रमाणित बीज लेते हैं दुकान से, तो उसका बिल बिल बनवाते हैं कि नहीं?
1: बनवाते ना बिल।
0: हाँ, मान लो कभी वो बीज नहीं उगा
1: हाँ
0: तो अपन उसको बता तो सके। तो भैया, जैसे मान लो आपके पास कितने बीघा जमीन है?
1: 20 बीघा जमीन है अपने पास।
0: अच्छा, तो सारी जमीन में आप सोयाबीन, वो मक्का बोएंगे,
1: हाँ मकई बोएंगे।
0: तो आप सोयाबीन क्यों नहीं बोते?
1: सोयाबीन की फसल अब होती नहीं है,
0: फसल होती नहीं है या कुछ और कारण है?
1: इल्ली लग जाती है उसमें। इल्ली सबसे बड़ी बात ये है,
0: अच्छा, चेली लग जाती है, मतलब फसल को नुकसान ज्यादा होता है।
1: नुकसान ज्यादा होता है, एवरेज भी इतनी कम निकलता है उसको।
0: अच्छा, और मक्का
1: मक्का का एवरेज अच्छा निकलता है,
0: मतलब नुकसान नहीं है?
1: उसमें नुकसान नहीं होता
0: तो आपने
1: उसका।
0: जैसे पिछली बार मक्का ली थी तो पर्याप्त तो मतलब पूरे मतलब खेतों में हो गई थी?
1: हाँ,
0: अच्छा, तो आपको मतलब उसका मार्जिन भी अच्छा मिला होगा।
1: माल नहीं अच्छा मिला है
0: अच्छा,
1: लेकिन उसका
0: बढ़िया।
1: भाव कम मिलता है।
0: अच्छा, भाव कम रहता है मक्का
1: हाँ
0: का। हमने सुना है कि आजकल सब मक्का ही बो रहे हैं ना,
1: हाँ सब मक्का ही हो रहा है सब।
0: इसलिए भाव कम रहता है।
1: हाँ भाव कम रहता
0: तो जैसे आप मक्का बोएंगे तो उसमें जैसे बीज किस हिसाब से लेंगे?
1: भी, अपन पूरा 20 मतलब 20 बीघा का बीज अपन तिरपाल पे डालेंगे। तिरपाल पे बीज डाल कर फिर उसमें अपन बीज उपचार की दवाई मिलाते हैं, फिर उसमें DAP खाद मिला के है। अब 2 कट्टा मिला लें, 3 कट्टा मिलाते हैं।
0: अच्छा, मतलब जैसे बीज होता होगा उस हिसाब से डालते हैं।
1: फिर उसे बोरी में भरकर मशीन में डालते हैं।
0: अच्छा, तो मशीन से बुवाई होती
1: हाँ
0: है?
1: मशीन से होती है बुवाई।
0: अच्छा, तो जैसे आपने मशीन से बुवाई कर दी,
1: हाँ
0: बीज डाल दिया, उसके बाद जैसे उसके जैसे बीज डाल दिया आप,
1: हाँ बीज बो दिया,
0: उसके बाद फिर उगने का इंतजार करते हो?
1: उगने का इंतजार करते हैं। फिर 15 दिन बाद उसमें कचड़ा होता
0: अच्छा,
1: है।
0: खरपतवार।
1: हाँ फिर कचड़े की उसमें दवाई डालते हैं। कचरा मरने बाद मक्का बड़ी होती जाती है, फिर उसमें भुट्टे स्टार्ट होते हैं।
0: तो जैसे मान लो उसमें कोई रोग लग गया तो आप उसको दवाइयां डालते
1: हाँ
0: हैं?
1: उसमें रोग लगता है, इल्ली का रोग लगता है,
0: अच्छा,
1: इल्ली लग जाती तो अपन इल्ली की दवाई डालते हैं उसमें।
0: तो जैसे आपने दवाई डाली रोग लग रहा है तो मतलब जैसे उससे खत्म हो जाती है, तो आप देसी दवाई डालते हैं या मतलब ये अंग्रेजी डालते हैं?
1: अंग्रेजी दवाई डालते हैं, अंग्रेजी
0: अच्छा, देसी का उपयोग नहीं करते
1: नहीं,
0: यार।
1: देसी का उपयोग नहीं करते।
0: अच्छा, अब जैसे फसल तैयार हो गई तो कैसे पता चलेगा कि ये भुट्टे मतलब तैयार हो गए?
1: उसके पत्ते सूख जाते हैं,
0: अच्छा,
1: पत्ते सूखने के बाद अपन को दिखने लगती है। वो तो 60 दिन वाली भी आती है मक्का, 90 दिन वाली भी आती है।
0: तो अपन कौन सी बोएंगे?
1: अपन 60 दिन वाली बोते हैं।
0: अच्छा, तो वो जल्दी हो जाती।
1: हाँ 60 दिन में जाती है। फिर उसको अपन लेबर से उसके मतलब भुट्टे तुड़वाएंगे, भुट्टे पूरे खेत में भुट्टे पड़े रहते हैं उसके। हाँ
0: अच्छा, वरना ऐसे ही डाल देते हो?
1: वो तोड़ के मतलब ढेर लगा देते हैं जगह जगह।
0: अच्छा, जो है ढेरी बना देते हैं,
1: हाँ ढेरी बना देते हैं, फिर उसको ट्रॉली में भर कर खान में डालते हैं।
0: मतलब बहुत दिन तक सूखती है,
1: हाँ
0: फिर उसके वो निकालते हैं दाने।
1: खरान में डाल के फिर अपन थ्रेसर, जो भी थ्रेसर से निकलवाता है वो थ्रेसर से निकलवा लेता है, और लोहा
0: मजदूरों से?
1: हार्वेस्टर भी चलवा देते हैं उसको।
0: अच्छा,
1: हार्वेस्टर
0: तो
1: से
0: अपन को
1: निकलवा,
0: फायदा किस चीज से होता है?
1: फायदा अपन से थ्रेसर वाली में फायदा होता है।
0: हार्वेस्टर में क्या नुकसान होता है?
1: हार्वेस्टर में नुकसान होता है, उसमें कचरा आता है उसमें।
0: अच्छा, तो फिर उसके बाद आप भंडारण करते हैं कि बेच देते?
1: नहीं फिर उसको हार्वेस्टर वाली को सुखाना पड़ती है,
0: अच्छा,
1: सुखा के फिर थ्रेसर से क्यों साफ करना पड़ती है उसे, फिर मंडी में लाया जाता है।
0: कफन लोग उसके भंडारण करते हैं या बेच डायरेक्ट बेच देते?
1: डायरेक्ट बेच दो
0: अच्छा, रखते नहीं है?
1: नहीं करते, क्या है इसलिए रखते हैं ना, कीड़े पड़ जाते हैं जल्दी से। हाँ
0: तो क्या सीलन रहती है?
1: सीलन रहती है सर।
0: अच्छा, तो उसको बेचने में ही फायदा
1: हाँ
0: है?
1: गीली बेचने में ही फायदा है,
0: अच्छा,
1: सूखे में तो उसका भी भाव ही मतलब कम और वजन पे ही मतलब कम आ जाती है।
0: तो जैसे मान लो आपने वो कटाई करी तो नीचे खेत में वो

0: हिंदी वगैरह रह जाती हैं जो उसमें,
1: हाँ
0: तो उस उनका क्या करते हो आप?
1: उनका बाद में मतलब लेवल लगा के अकड़वाते हैं, अकड़वा के फिर साइड में मेड़ों पे फेंकवाते हैं,
0: अच्छा, तो वो खाद के काम आती है?
1: खाद के काम में जाती है।
0: अच्छा, तो जलाते तो नहीं हो आप
1: नहीं नहीं
0: उसको?
1: नहीं नहीं जलाते,
0: अब मान लो आप जला दो तो उससे क्या नुकसान होगा?
1: नुकसान होता है उससे। इसमें क्या है, जो अपनी जमीन होती है ना,
0: हाँ,
1: उसमें जितने भी कीटनाशक मतलब वो होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं उसमें।
0: अच्छा, वो तो ठीक है, आप जैसे जो खाद तैयार हो जाता है उससे, है ना? पर जैसे आप, आपकी जो फसल है
1: हाँ।
0: तो वहां कौन सी मंडी में ले जाते हैं आप?
1: अपन गुना मंडी लाते हैं।
0: अच्छा, तो भैया जे तो हुई अपनी खेती किसानी की बात, और अब देखो किसान और पशुधन एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो कृष्णपाल भैया, हम आपसे जानेंगे कि आप मतलब पशु भी पालते हैं?
1: हाँ मैं पशु पालता हूँ, गाय है मेरे पास, 5-6 गाय हैं,
0: अच्छा,
1: दूध का काम करता हूँ मैं। हाँ
0: मतलब आप दूध बेचते भी हैं?
1: दूध बेचता हूँ।
0: अच्छा, तो जैसे आप पशुओं मतलब गायों को पालते हैं, तो आपके पास कौन से नस्ल की गाय है?
1: मेरे पास साहीवाल है,
0: अच्छा,
1: गिर गाय है और देसी गाय है।
0: तो जी आप कहाँ से लाते हैं गाय?
1: ये राजस्थान से लाते हैं,
0: अच्छा, और गिर? अच्छा,
1: गिर भी मतलब वहीं पर मिलती है राजस्थान में।
0: राजस्थान में ही मिलती है? क्या बता रही? अपन करूं पहले तो जैसे अपने पास गाय हैं, तो आप इनके रख रखाव की क्या व्यवस्था है?
1: मैंने एक मतलब 3 सेट कर रखा है,
0: अच्छा,
1: 3 सेट में 4-5 पंखे हैं, पंखे रख रखे हैं उनके लिए, वहीं पे मतलब भुस्सा ही व्यवस्था है,
0: अच्छा,
1: सानी बनाते हैं उधर ही, पानी की व्यवस्था भी उधर ही है।
0: तो आप पानी मतलब उनको सानी कितने बार देते हैं दिन
1: दिन
0: में?
1: में 3 बार सानी देता हूँ, सुबह दोपहर को शाम को।
0: अच्छा, जैसे अब गाय है अपनी, तो गर्मियों में उन्हें जैसे लू वू से बचाव के लिए,
1: चारों तरफ से पैक रहती हैं,
0: अच्छा, बाहर नहीं निकालते,
1: बाहर
0: बांध
1: नहीं,
0: के ही चराते हैं?
1: हाँ बांध कर ही तक खिलाते हैं।
0: और जैसे मान लो उनको बीमार दुखी होती है, तो कैसे समझ में आता है आप?
1: डॉक्टर आता हफ्ता में 2 दिन आते हैं।
0: अच्छा, आप चेकअप कराते
1: हाँ
0: रहते हैं?
1: चेकअप कराता रहता हूँ।
0: अच्छा, तो टीकाकरण कराते हैं आप?
1: हाँ कराता हूँ।
0: तो मतलब टीका का क्या रहता है, किस हिसाब से टीका लगते हैं उनको?
1: टीका लगता है, 6 महीने में लगता है
0: यार
1: मेरा
0: कृष्णा,
1: वो।
0: अच्छा, 6 महीने में टीका लगते हैं?
1: वो
0: तो कौन कौन से टीका लगवाए?
1: तो बीमारी के हिसाब से लगाते हैं सीधा।
0: अच्छा, और जैसे नए जो बच्चे होते हैं गायों के, उनके भी टीकाकरण करवा?
1: उनके भी 6 महीने के बाद लगता है उनका भी टीका।
0: अच्छा, जैसे पैदा होने पे नहीं लगता? और जब गाय भी आती है तो आप क्या देते हैं उन्हें खाने पीने?
1: हाइला देते हैं उसे,
0: अच्छा,
1: हाइला में अजवाइन देते हैं, गुड़ में और सरसों का तेल और भी मावा मिष्ठान मिलाते हैं।
0: मतलब ड्राई फ्रूट देते हैं? अच्छा, और जैसे उसके अलावा अपन जैसे दूध बढ़े उसके लिए क्या देते हैं?
1: उसके लिए अपन खड़ खिलाते हैं,
0: अच्छा, खली देते हैं?
1: खली देते हैं, पशु आहार आता है,
0: अच्छा, पशु आहार भी देते हैं?
1: पशु
0: और
1: आहार।
0: जैसे आपके यहाँ जैसे गाय है, तो गोबर गैस संयंत्र भी है,
1: हाँ है,
0: तो जैसे अब आपको सिलेंडर वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं होगी,
1: नहीं पड़ती।
0: तो उसकी जो सैलरी निकलती है उसको आप क्या खाद के उसमें लेते हैं?
1: हाँ खाद तो उसमें लेते हैं, उसको मतलब गांव भिजवा देते हैं।
0: अच्छा, और भरभूरा खाद
1: हाँ
0: निकलता होगा बढ़िया,
1: और क्या,
0: तो उससे आपकी फसल भी अच्छी रहती होगी।
1: फसल भी अच्छी रहती है।
0: तो भैया आपने हमें जानकारी दी, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक किसान अपने घर में कम से कम 2 गाय 1 भैंस
0: हाँ, पाल के रखें?
1: अपना पाल कर रखना चाहिए।
0: अच्छा,
1: गाय का दूध बहुत मतलब स्वादिष्ट होता है,
0: पौष्टिक होता है?
1: पौष्टिक होता है, बच्चों के काम में आता है बहुत।
0: देखो भैया, आप बात तो सही कह रहे हैं कि अगर देखो किसान खेती करता है और उसके घर में

0: दूध नहीं है तो बेकार है ना।
1: सही बात है,
0: तो किसान को पशुपालन तो करना ही
1: चाहिए साथ में।
0: लेकिन आजकल क्या हो गया है कि व्यक्ति मतलब आदमी करना नहीं चाहे।
1: करना नहीं चाहता, पहले के लोग थे हर एक घर में कम से कम 10-10 भैंसे रहती थी, 10-10 गाय रहती थी,
0: हाँ, जबकि बेचते नहीं थे।
1: बेचते नहीं थे। आजकल जो स्थिति हो गई के आजकल के जो बच्चे हैं ना वो मतलब इस चीज में इंटरेस्ट लेना ही
0: नहीं
1: नहीं
0: लेते
1: चाहते,
0: तो इसलिए उनको दूध भी नहीं मिलता,
1: उनको दूध नहीं मिलता,
0: और बीमारियां भी हो रही हैं।
1: बीमारी फैल जाती है।
0: और क्या, नहीं हो घर में दूध होगा तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, है ना।
1: घर में मतलब गऊ है ना तो उससे उसके जो बाथरूम पेशाब आती है,
0: हाँ,
1: बच्चों को पिलाते हैं, बड़ों को पिलाते हैं, उससे बीमारियां मतलब दूर होती
0: और
1: हैं,
0: हमने तो जो ना गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं तो उससे बीमारियां नहीं हो।
1: बीमारियां नहीं होती।
0: अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।
1: राम राम।
0: देखो अब मौसम की जानकारी, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 39.5 डिग्री और न्यूनतम रहा 25.2 डिग्री। आर्द्रता सुबह की रही 56% और शाम की रही 31%। सूर्योदय का समय 5:31 और सूर्यास्त रहा 7:11।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहा
2: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
4: नमस्कार।
3: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
4: देखो 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू

0: हम सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
0: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, मैं आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया, 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली।

0: दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी, उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था, आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गाँव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गाँव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है, हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं है, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गाँव में भी ऐसा हुआ, गाँव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाते थे और फिर उसके पास बहुत टाइम था।

0: और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में, तो वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है वह करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी, तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उसने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, और मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, उनसे सीखे।

0: यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दुमरों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे हैं। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब

0: पर लाए और तीसरे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं। हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है। तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास। उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया? ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
3: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को

0: दिखाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आया, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं तीन प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी तीन बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
1: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले कितने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
0: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात की है, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
1: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसकी ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुल
0: सकता,
1: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशन होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट

0: मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि तो बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखे कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: FM पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं रहना है तेरे दिल में फिल्म का गीत। बॉम्बे जयश्री की मखमली आवाज है, समीर के बोल और हरीश जयराज का संगीत।

आइए श्रोताओं, अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसे गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने। एमएम करीम के संगीत से सजा ये खूबसूरत सा गीत फिल्म है रोग का, और इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

0: तो श्रोताओं, रोग फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FMN 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा

0: 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका

0: साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरदचंद ने क्षेत्रीय कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल,

0: माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने सातवें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने तीन तीन विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।
2: आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में 10 नंबरी फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का यह अगला गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में है, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म डार्लिंग डार्लिंग।

सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत, अब क्या होगा इस फिल्म से ये गीत सुनिए, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ है।

आइए आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गाना शकील अहमद का लिखा हुआ, संगीत आनंद शंकर का है, गायक स्वर मुकेश और आरती मुखर्जी के।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गाना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाळा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए, ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर।

0: खुद स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूब कर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूं। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

तुमसे मिले तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच, तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, और किसी चीज का तलबगार वो भी नहीं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

आपको पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताबे जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वो ही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।

भीगी जुल्फें, भीगा आंचल, आंखों में नींद हो, चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: बैप्टिस्ट आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक

0: Women's cricket. India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11:10 हुए हैं और अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:51 पर अपने कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।